एफएम 100.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। इस समय सुबह की 5:59 होने को हैं। हमारी प्रथम सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। FM 107.7 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम TVK सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब TVK के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को TVK सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक S कामराज को TVK सरकार को समर्थन देने की

0: घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का चुरू केंद्र है, FM 107 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आइए जानकारी करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। सुबह 6:10 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चिंतन, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। समय रहेगा सुबह 6:15। 6:45 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार, श्री रामचरित मानस गान। लंका कांड से संकलित एपिसोड होगा 374। समय रहेगा सुबह 7:20। 7:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नमस्कार चुरू, इसमें चर्चा होगी आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है। समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे सुबह 8:00। 8:15 का समय रहेगा मॉर्निंग न्यूज का। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम, समय रहेगा सुबह 8:30। दिन में 9:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

दिन में नौ बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे देश गान। 9:15 मिनट का समय रहेगा कार्यक्रम साहित्य सुगंध का। इसमें आप कविता पाठ सुनेंगे, हिंदी कविता पाठ। कवि होंगे सत्यदीप। किसी एक फिल्म की जानकारी पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्र संसार आपके लिए लेकर आएंगे दिन में 9:30 पर। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दिन में 10 बजे से। दिन में 11 बजे सुनिएगा कार्यक्रम विवरण। 11:05 का समय रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग समय रहेगा दिन में 12 बजे। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार होंगे समंदर खान और साथी, इनसे आप लोक रचनाएं सुनेंगे। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे दिन में 1 बजे। 1:05

पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम घर आंगन। इसमें चर्चा होगी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे संतुलित करें। इसके अलावा जानकारी दी जाएगी मधुमेह और रक्तचाप प्रबंधन है जरूरी। मिड डे न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे दिन में 2 बजे। दिन में 2:15 का समय रहेगा दोपहर समाचार का। दिन में 2:30 पर आप सुन पाएंगे सोशल मीडिया कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश। दूसरी सभा में शाम 5 बजे का समय रहेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम पर आधारित कार्यक्रम युववाणी का। इसमें जानकारी होगी हीटवेव का विज्ञान पर। इसके अलावा चर्चा होगी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI पर। कार्यक्रमों संबंधी जानकारी कार्यक्रम विवरण में सुनिएगा शाम 5:55 से। शाम 6 बजे होंगे हिंदी में समाचार बुलेटिन। 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन। देशभक्ति फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:10 पर। संस्कृत में समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे शाम 6:20 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा शाम 6:40 पर। खेती और गृहस्थी ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7 बजे। इसमें चर्चा होगी हरी बाढ़ की पूर्व तैयारी कैसे करें। इसके अलावा जानकारी दूध की बढ़त कैसे ले और एक और जानकारी छोटे मेमनों की उचित देखभाल विषय पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता समय रहेगा रात्रि 8 बजे। 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे समाचार संध्या।

रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रे न्यूज एट 9। राजस्थानी लोक संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 पर। रात 9:30 का समय रहेगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम चर्चा का विषय का। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा रात 10 बजे। रात 10:30 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की जानकारी कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।

नमस्कार साथियों, एक और नई सुबह में एक और चिंतन कार्यक्रम की कड़ी लेकर के हाजिर हो गए हैं। आपने जीवन में बहुत से काम किए हैं, जहां आपको सफलता भी मिली है और असफलता भी मिली है। हम आज यही बात करेंगे कि जिस मार्ग पर आप असफल हो गए हैं, वहां आप निराश होकर के बैठिएगा मत, क्योंकि यही जो असफलता है हमें सीखने के बेहतर अवसर प्रदान करती है और हमें पुनः उठ कर के दोबारा उतनी ही से ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हमारे सफलता के मार्ग को प्रशस्त करती है। असफलता का मतलब हार नहीं है, बल्कि ये सफलता की राह में हम इसको पहला कदम भी मान सकते हैं। ये हमें अनुभव, मजबूती और नई समझ प्रदान करती है, जिसे हम अपनी गलतियों को सुधार कर दोबारा बेहतर तरीके से प्रयास करना सीख सकते हैं। इसीलिए जब भी आप जीवन में असफल हो जाइए तो निराश मत होइए। आप है अपनी गलतियों की पहचान कीजिए। असफलता बताती है कि क्या काम नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम असफल होने से बच सके, जिससे हमारी सही रणनीति है वो हम अपना सके, हम मानसिक रूप से मजबूत और सहनशील बन सकते हैं। ये हमें अनुभव देती है और हमें मजबूत बनने के लिए तैयार करती है। जब हम हार के बाद फिर से खड़े होते हैं तो हम

हमारे अंदर जो एक आत्मविश्वास है वो और गहरा हो जाता है, हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, हम लोग लीक से हट करके सोचने और समस्या का जो समाधान है नए तरीके से खोजने के लिए प्रेरित करती है, हमें नई राह भी दिखाती है।

असफलता कुछ नहीं है, बस और अधिक समझदारी से दोबारा शुरुआत करने का एक अवसर है। इसीलिए असफलता से डरने की बजाय उसके विकास के अवसर के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए और फिर से प्रयास करना चाहिए सफलता के मार्ग की ओर। असफलता से सीखने का महत्व रहता है कि जीवन में असफलता कोई अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत का पहला कदम है। ये हमें बताती है कि किस दिशा में हमें सुधार करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। जब हम गिरते हैं तभी तो हम उठना सीखेंगे। इसीलिए असफलता को हार नहीं अनुभव मानना चाहिए।

असफल होने पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं, इसकी बजाय हमारे अंदर जो नकारात्मक भावनाएं हैं, हमारे जो नकारात्मक पहलू है, उनको आप दूर कीजिए, आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान दीजिए और अपनी असफलता से सबक लेकर के अपना आत्मविश्वास बढ़ा करके दोबारा उठने की कोशिश कीजिए और इससे आपके अंदर सहनशीलता बढ़ेगी और आपका सफलता का जो मार्ग है वो भी प्रशस्त होगा।

सफलता के लिए आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, मेहनत कड़ी होनी चाहिए और उसमें निरंतरता रहनी चाहिए। यही सफलता के मार्ग है। तो इसलिए जब भी आप असफल हुए हैं, निराश मत होइए, पुनः लग जाइए सफलता के मार्ग को प्राप्त करने के लिए।

अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह के 6:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अनुराधा पोडवाल साथियों की आवाज में गणेश स्तुति अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: महेंद्र कपूर की आवाज में लीजिए सुनते हैं हमराज फिल्म का ये गीत, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत।

श्रोता, इस समय आकाशवाणी चुरू से सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत बहार सौदागर। लीजिए इस फिल्म का नगमा सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: मन्ना डे की आवाज में श्री 420 फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत शैलेंद्र का था और संगीत शंकर जयकिशन का। इस गाने के साथ ही आज का गीत बाहर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अभी आप गीत बाहर कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 107 MHz पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस गान लंका कांड से संकलित एपिसोड 374। कलाकार ए हरिहरन और अनुराधा पोडवाल। संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।
1: एपिसोड नंबर 374 374।

देवाधिदेव महादेव से राम अवतार की पूरी कथा सुनकर पार्वती के मन का संशय सर्वथा मिट गया, किंतु शिव की इस उक्ति ने कि यह अनुपम कथा काकभूषुंडी ने गरुड़ को सुनाई, उनके मन में सहज जिज्ञासा जगा दी। एक कौवा ऐसी भक्ति कैसे पा गया? देवाधिदेव ने तब वो कथा सुनाई कि पवित्र और पुण्य आत्मा काकभूषुंडी को यह सदगति और ऐसा दुर्लभ सुयोग और सुअवसर कैसे प्राप्त हुआ।

लंका कांड से संकलित श्री रामचरितमानस गान एपिसोड 374 अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल, ये सारी उपमाएं दर्शाती हैं आपके व्यवहार को, यानी आपका व्यवहार ही आपकी पहचान। आपका व्यवहार, आचरण और दूसरों के प्रति सम्मान ही समाज में आपकी वास्तविक छवि बनाता है, न कि आपका पद, धन, रूप या रंग। अच्छा व्यवहार लोगों के दिलों में जगह बनाता है और विनम्रता और ईमानदारी के साथ एक सच्चे इंसान की असली पहचान बनती है। आपका व्यवहार ये दर्शाता है कि आपके भीतर से कैसे व्यक्ति हैं। आपका स्थायी प्रभाव आपके व्यवहार से ही बनता है, जो समय के साथ आपकी पहचान बनता चला जाता है। आप किसी भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो अंतिम पहचान आपके आचरण से ही होती है। पद से ऊपर होता है अपना व्यवहार। अपने व्यवहार में आपको संस्कारवान रहना चाहिए। हम सभी जो संस्कारों से युक्त जब व्यवहार करते हैं तो लोगों के बीच में हमारा एक सम्मान बनता है, एक छवि बनती है। यानी कि हमारा पद, हमारा जो छवि है वो न देकर के हमारा लंबे समय तक चलने वाला आचरण ही है जो लोगों के बीच में रहता है। हमारा जो व्यवहार है, जो संस्कार है और शिक्षा का यही दर्पण है। सच्ची शिक्षा का परिणाम भी हमारा व्यवहार ही रहता है। अगर हम विनम्र, दयालु और सम्मानजनक व्यवहार करने वाले व्यक्ति को समाज में जहाँ आदर मिलता हुआ देखते हैं, वहीं आपने कभी गौर किया होगा कि जब कोई कठोर व्यवहार वाला होता है, हमेशा कड़वा बोलने वाला होता है, तीखी व्यंग्य बात बोलने वाला होता है या झूठा बोलता है, उस व्यक्ति को आपने समाज में अकेले खड़ा हुआ देखा होगा। अकेलेपन का एहसास उसे अपने व्यवहार से ही मिलता है। तो आप अपने आप में दया, प्रेम, सहयोग और सामंजस्य का व्यवहार रखते हैं तो लोग हैं वो आपके पास स्वयं ही आते हैं। और अगर आप दूसरों से इस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं कि हमेशा आपके सहयोगी बने, सामंजस्य बना करके चले और वार्तालाप में है वो निरंतर हो, वो सहयोग है वो मिलता रहे, तो हमें भी अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। जहां हम कठोर व्यवहार अपनाए रखेंगे, व्यंग्यात्मक बाण प्रतिदिन छोड़ते रहेंगे, झूठापन व्यवहार में लाते रहेंगे, तो हम कभी भी समाज के साथ, लोगों के साथ या परिवार में साथ मिलकर नहीं चल सकते हैं। इसलिए आवश्यकता रहती है कि हमें भी दयालु, विनम्रता के साथ में, सहयोग की भावना के साथ में अपने व्यवहार को अपनाना चाहिए। और हमारा जो व्यवहार होता है वही हमारा परिचय है। ये बहुत ही अत्यंत गहरा सत्य है। आपकी बातचीत, हमारी काम करने की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, आचरण सबके सामने हमारी एक छवि बनाता है। केवल शब्दों से छवि नहीं बनती है, अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से हमें सम्मान मिलता है और संस्कार हमारे व्यक्तित्व को

और अधिक विश्वसनीय और सम्मानजनक बना देते हैं, यादगार बनाते हैं। इसीलिए अपने मन में अहंकार को छोड़ करके अपने नैतिक चरित्र की ओर ध्यान देना चाहिए और हमारा ये जो नैतिक चरित्र है वही हमारे जीवन में हमारी पहचान बनता है, हमारा व्यवहार बनता है और सकारात्मक प्रभाव भी अन्य लोगों पर उसका पड़ता है।

आपकी पहचान आपके व्यवहार से होती है, वरना आप ही के नाम जैसे कितने ही लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन आपका व्यवहार आपकी पहचान है।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ,
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट,
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध,
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति,
0: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम,
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413366097।

जीवन चलने का नाम है, और जब हम चलते रहते हैं तो प्रगति करते रहते हैं, और अगर ठहर गए तो हमारा विकास भी रुक जाता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो बढ़ती उम्र है उसमें हड्डियों की मजबूती के लिए, अन्य शारीरिक कार्यों के लिए कैल्शियम की बहुत अधिक ज़रूरत होती है, और इस बढ़ती उम्र में कैल्शियम की आवश्यकता के अनुसार है वो हमें कैल्शियम लेना ही भी चाहिए, जिससे कि हमें है वो चलने फिरने में कहीं भी किसी भी प्रकार की शारीरिक दिक्कतें नहीं आएगी, हमारी शारीरिक परेशानी है वो नहीं बढ़ेगी। 50-55 वर्ष के बाद में जो हड्डियाँ हैं वो तेज़ी से कमज़ोर होती जाती है, और शरीर को कैल्शियम सोखने की क्षमता है वो कम होती जाती है, जिसमें पुरुष अगर है तो 70+ के और महिला अगर है तो 51+ की उम्र के बाद रोजाना उसको 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में होना यह चाहिए कि हम प्रतिदिन है वो अपने खान पान में कैल्शियम की मात्रा है उसको बढ़ाएं और उसको आवश्यक रूप से लें। दूध, दही, पनीर, छाछ, ये जो उत्पाद हैं ये सब है कैल्शियम के स्रोत हैं। पालक है, बथुआ है, सहजन के पत्ते हैं, हरी सब्जियां हैं, ये भी कैल्शियम की स्रोत मानी जाती है। बादाम, तिल के बीज है, रागी है, इनसे भी अच्छा कैल्शियम के स्रोत माने जा रहे हैं। और कई बार हम ये देखते हैं कि जो वज़न उठाने वाले व्यायाम और हड्डियों को मजबूत बनाने में भी जो कैल्शियम है वो सहयोग करता है।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: श्रोता इस समय आकाशवाणी चूरू से सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। कार्यक्रम में बात करते हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार की। इसके तहत जो ऋण की अवधि थी उसको बढ़ा करके 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है। इस पुनर्गठित योजना का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो नए लाभार्थी हैं उनको जोड़ करके रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को सशक्त बनाना है। और इसके अंतर्गत जो ऋण की जो राशि थी उसमें भी वृद्धि कर दी गई है और इसमें जो अवधि है वो भी 31 मार्च 2030 तक कर दी गई है। और इसमें पात्र जो व्यक्ति रहते हैं उनमें रहेंगे मार्च 2020 से या उससे पहले जो वेडिंग कर रहे थे या सभी जो स्ट्रीट वंडर्स हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और डिजिटल प्रोत्साहन के लिए इसके अंतर्गत जो आप क्रेडिट कार्ड का प्रावधान भी है, खुदरा थोक लेन देन पर भी रुपये तक का कैशबैक आपको मिलता है, तो इस योजना का लाभ है वो आप उठा सकते हैं।

तो जीवन के दोहराव में आप अपनी एक राह को निश्चित कर लीजिए और अगर आप पात्र हैं तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। ये था आज का नमस्कार चूरू कार्यक्रम। कार्यक्रम से हमें अनुमति।

0: अभी आप नमस्कार चूरू कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 107 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्ण मूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव N मुरुगंदम और वित्त सचिव T उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोग ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव P शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय NR कांग्रेस के नेता N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। N रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय N रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन S नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद

0: राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान

खुद से भी प्यार मैंने तुम्हारे लिए किया। ये नज़्म अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में। श्रोता इस समय आकाशवाणी चुरू से सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर संगम। लीजिए सुनते हैं अगली गज़ल मिताली सिंह की आवाज़ में।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: भूपेंद्र सिंह की आवाज में अभी आप गजल सुन रहे थे। सुर संगम कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चुरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी के लिए आज प्रचंड गर्मी और लू का रेड अलर्ट। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के बारे में सीबीआई ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया, अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की। और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मी निलंबित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का असर है। प्रचंड गर्मी और लू के थपेड़ों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और अधिकतम तापमान कल 48 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं फलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में दिन का पारा 45 डिग्री के पार रहा। प्रदेश में दिन के तापमान में 6 डिग्री और रात के पारे में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और जालौर में रात का पारा 30 डिग्री के पार रहा। राजधानी जयपुर में भी गर्मी का प्रकोप तेज हो गया है। दिन के पारे में 3 डिग्री और रात के तापमान में करीब 1 डिग्री का उछाल रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में पारे में और बढ़ोतरी के आसार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हीट वेव के साथ साथ रातें भी काफी गर्म रहने की संभावना है।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर रात का पारा भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन गर्मी के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राज्य में कल कहीं कहीं हल्की बरसात भी हुई। अलवर के कोटकासिम में 1.5 सेंटीमीटर पानी बरसा। भरतपुर जिले में आंधी के साथ जोरदार बरसात हुई, वहीं कई गांवों में ओले भी गिरे। आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में धूल भरी हवाएं चलने के आसार हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के संबंध में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। इसमें देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के बारे में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। देश में नासिक सहित अन्य स्थानों से भी पेपर लीक करने में शामिल साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच सीबीआई टीम जांच के लिए कल जयपुर पहुंची। इन्होंने राजस्थान एसओजी की ओर से हिरासत में लिए गए करीब 20 लोगों से पूछताछ की। इससे पहले सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार को भी देहरादून से पकड़ा गया था। एसओजी के आईजी अजयपाल लांबा ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए एसओजी सीबीआई का पूरा सहयोग कर रही है।

0: सीबीआई की टीम एसओजी से संपर्क में है, उनकी टीम के जो भी सदस्य हैं उनको अब तक की पुलिस ने जो पूछताछ करी है उस पूछताछ से उनको अवगत करा दिया गया है और पूछताछ से जो चीजें सामने आई उसमें कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन तमाम संदिग्ध व्यक्ति जो है उन व्यक्तियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू करी है। पूछताछ के पश्चात इन व्यक्तियों का जो जो इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा उस पर आगे की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा ही की जाएगी।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: नीट परीक्षा कथित पेपर लीक के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस की ओर से जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोटा स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नवा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना भी समारोह में मौजूद रहेंगे। विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉ. विमला डोकवाल ने बताया कि इस साल कृषि, उद्यानिकी और वानिकी संकायों के कुल 358 अभ्यर्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इनमें स्नातक के 318, स्नातकोत्तर के 34 और पीएचडी के 6 शोधार्थी शामिल हैं। विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले 11 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है। साथ ही मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी कम वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेट्रोल डीजल की गैर जरूरी खपत कम करने की बात कही है। सभी विभागों को सरकारी कार्यक्रमों, दौरों और वीआईपी मूवमेंट तथा प्रोटोकॉल के नाम पर अतिरिक्त गाड़ियों की संस्कृति खत्म करने को कहा गया है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल बचत की देशव्यापी अपील की थी। ज्ञान भारतम मिशन के तहत राजस्थान में अब तक 16.5 लाख से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है, जो देश में सबसे ज्यादा है। कल जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि कला संस्कृति विभाग और राज्य के विशेषज्ञों की सहभागिता से पांडुलिपि सर्वेक्षण का काम व्यापक स्तर पर किया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न पुराणों, वेदों और अन्य ग्रंथों से संबंधित महत्वपूर्ण पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि इन दस्तावेज की श्रेणीबद्ध सूची तैयार की जा रही है। कोटा के न्यू मेडिकल अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में चिकित्सा विभाग ने लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्यकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें कॉलेज के स्त्री और प्रसूति रोग विभाग के आचार्य डॉ. बद्रीलाल और सह आचार्य डॉ. खुशबू मीणा शामिल है। वहीं कॉलेज की नर्सिंग अधिकारी मीनाक्षी मीणा और जेके लोन अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी पिंकी खींची को भी निलंबित किया गया है। जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. निर्मला शर्मा और न्यू मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण अभियान में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जैसलमेर के ब्रीडिंग सेंटर में 2 और नन्ही गोडावण का आगमन हुआ है। इसके साथ ही कृत्रिम प्रजनन केंद्रों में गोडावणों का कुल आंकड़ा 86 पर पहुंच गया है। 10 मई को रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में और 11 मई को सम सेंटर में एआई तकनीक के माध्यम से 2 चूजों ने जन्म लिया। अब तक इस तकनीक की मदद से 26 गोडावण जन्म ले चुके हैं। राजस्थान विद्युत

0: उत्पादन निगम के सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की कुल 1320 मेगावाट क्षमता की दो सुपर क्रिटिकल इकाइयों ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये बेहतरीन प्रदर्शन वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अंतिम तिमाही में किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि दोनों सुपर क्रिटिकल इकाइयों से 95% से अधिक बिजली उत्पादन उपलब्धता हासिल हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी के लिए आज प्रचंड गर्मी और लू का रेड अलर्ट। बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अधिकतम तापमान 48 डिग्री के पार। नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक के बारे में सीबीआई ने मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया, अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की। और कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज और जेके लोन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 4 स्वास्थ्य कर्मी निलंबित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 107 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है समूह स्वरों में देशगान।

0: समूह स्वरों में अभी आप देशगान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम साहित्य सुगंध। इस कार्यक्रम में हिंदी कविता पाठ और कवि हैं सत्यदीप।
1: मिलकर अब नवगीत सहेजे,

जे। अगला गीत, रण बंक सदा मुस्काय जहां जग सिर मोरी है भारत, जहां ज्ञान खान विद्वान रमे इक नाम्बर जोरी है भारत। रण बंक सदा मुस्काय जहां जग के सिर मोरी है भारत, जहां ज्ञान खान विद्वान रमे इक नाम्बर जोरी है भारत। भारत भूमि का मान सदा असमान सरीखा है, ऊंचा सिंह सपूती मायड़ भू पहचान शिरोमणि है भारत। रणबंक सदा मुसकाय जहां जग सिर मोरी है भारत, जहां ज्ञान खान विद्वान रमे इक नाम्बर जोरी है भारत। भारत भूमि का मान सदा असमान सरीखा है, ऊंचा सिंह सपूती मायड़ भू पहचान शिरोमणि है भारत। धीर गंभीरे सागर तीरे उच्च हिमालय की चोटी, धीर गंभीरे सागर तीरे उच्च हिमालय की चोटी, खुद सिंगारे परकत आके गलमाल बनी नदियां मोटी। धीर गंभीरे सागर तीरे उच्च हिमालय की चोटी, खुद सिंगारे परकत आके गलमाल बनी नदियां मोटी। हर मौसम की अंगड़ाई है पूरी सृष्टि है मानो भारत, भरपूर भुवन खिले खूब सुवन मीठे फलदाता है भारत। सिंह सपूती मायड़ भू पहचान शिरोमणि है भारत। भारत भूमि का मान सदा असमान सरीका है, ऊंचा सिंह सपूती मायड़ भू पहचान शिरोमणि है भारत। मन लोभ त्याग यहाँ लोग बाग, मन लोभ त्याग यहाँ लोग बाग, पर हित रहते हैं नित्य रत, सत जीता है इस भूमि पर रहे ठोकरों पर ही असत। मन लोभ त्याग यहाँ लोग बाग, पर हित रहते हैं नित रत, सत जीता है इस भूमि पर रहे ठोकर पर ही सदा असत। सूरज सा सफल सकल चमक, सूरज सा सबल सकल चमक है ज्ञान प्रदाता बस भारत। भरपूर भवन खिल खूब सुवन मीठे फलदाता है भारत। सिंह सपूती मायड़ भू पहचान शिरोमणि है भारत। अगला गीत है, कुछ देश मांगता है हमसे ऋण रूप दिया था जो उसने, कुछ देश मांगता है हमसे

जन्म प्रदाता पूरण दाता कसम मांगता है हमसे, कुछ देश मांगता है हमसे।

चेहरे गद्दार नजर नहीं आता है, छिपे हुए का पुरुष ढूंढने, छिपे हुए का पुरुष ढूंढने कि न

0: कुछ कसम मांगता है हमसे, ये देश मांगता है हमसे। अगला गीत, गीतरा गुमासता तू बोल तो सरी, शर्म छोड़ के दे बातड़ी खरी। गीतरा गुमासता तू बोल तो सरी, शर्म छोड़ के दे बातड़ी खड़ी। अरे तेरा ए गोट पोट पुनर झपीड़ स्यू, अरे तेरा ए गोट पोट पुनर झपीड़ स्यू, है ऊकल है मान को काल जरी पीड़ स्यू। रे तेरा ए गोट पोट पुनर झपीड़ स्यू, ऊकल है मान को काल जरी पीड़ स्यू। जीभ पे अंगार राख छोल तो सरी, गीतरा गुमासता तू बोल तो सरी। ओ गीतरा गुमासता तू बोल तो सरी, शर्म छोड़ के दे बातड़ी खड़ी। सब दा साच आंच झाकेली दरुजा तोड़, सब दारी साच आंच झाकेली दरुजा तोड़। रूखड़ारी रिम झोल सिल गसी ठोड़ ठोड़, रूखड़ारी रिम झोल सिल गसी ठोड़ ठोड़। जोड़े रो सांत पानी झकोल तो सरी, जोड़े रो ओ सांत पानी झकोल तो सरी। गीत रागू मासता तू बोल तो सरी, गीत रागू मासता तू बोल तो सरी। शर्म छोड़ के दे बातड़ी खरी, आंखें खोलियां दीखसी सच कीती साफ है। आंखें खोलियां दीखसी सच कीती साफ है, तोलसी अर बोलसी किनरो गुन्नो माफ है। आंखें खोलियां दीखसी सच कीती साफ है, तोलसी अर बोलसी किनरो गुन्नो माफ है। गूदड़ी में छिपिया मोती टोल तो सरी, गूदड़ी में छिपिया मोती टोल तो सरी। गीत रागू मासता तू बोल तो सरी, गीत रागू मासता तू बोल तो सरी। शर्म छोड़ के दे बातड़ी खरी।
1: हिंदी कविता अभी आप कवि सत्यदीप से सुन रहे थे। साहित्य सुगंध कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्र संसार।

चित्र संसार कार्यक्रम में आज की फिल्म है 1996 में बनी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म राजा हिंदुस्तानी।

राजा हिंदुस्तानी फिल्म में आमिर खान और करिश्मा कपूर की प्रमुख मुख्य भूमिका रही और इस फिल्म के लिए संगीत दिया नदीम श्रवण ने और गाने लिखे समीर ने। जारी होने वाले वर्ष में ये इस वर्ष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसने 7 स्टार स्क्रीन पुरस्कार और उस समय में 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते थे।

कहानी की शुरुआत में आरती सहगल यानी एक धनी उत्तराधिकारी और अपनी मृत माँ की यादों को ताजा करने के लिए पालनखेत नामक एक पहाड़ी इलाके में छुट्टियों पे जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात राजा हिंदुस्तानी से होती है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है, टूरिस्ट गाइड भी है। शुरुआती नोकझोंक के बाद दोनों में गहरा प्रेम हो जाता है।

टैक्सी ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी और आरती के बीच में शुरुआती नोकझोंक के बाद गहरा प्रेम हो जाता है। आरती के धनी पिता श्री सहगल इस रिश्ते के खिलाफ रहते हैं। आरती अपने प्यार के लिए राजा से शादी कर लेती है और शादी के बाद आरती की चालाक सौतेली माँ शालिनी और उसके रिश्तेदार राजा को अपमानित करने और आरती के मन में उसके लिए गलतफहमी पैदा करने की साजिश करते हैं।

राजा और आरती की शादी के बाद आरती की चालाक शोभतुली माँ शालिनी और उसके रिश्तेदार राजा को अपमानित करने और आरती के मन में उसके लिए गलत फहमी पैदा करने की साजिश रचते हैं और साजिशों के कारण राजा को लगता है कि उसे आरती के अमीर परिवार के सामने कमतर समझा जा रहा है। गलत फहमियाँ इतनी बढ़ जाती है कि गर्भवती आरती को छोड़ना पड़ता है और वह राजा से अलग हो जाती है और राजा के दिल में ये विश्वास टूट जाता है कि अमीर और गरीब कभी एक साथ नहीं।

इस तरह तब राजा के मन में ये विश्वास हो जाता है कि अमीर और गरीब कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं और उन दोनों का रिश्ता टूट जाता है। काफ़ी समय के बाद आरती का बेटा होता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब राजा को सच्चाई का पता चलता है। आरती ने उसे कभी कम नहीं समझा था। एक ड्रामा एक्शन से भरपूर और अंत में राजा और आरती का मिलन हो जाता है और परिवार फिर से एक हो जाता है।

राजा हिंदुस्तानी फिल्म के निर्देशक रहे धर्मेश दर्शन और इसमें मुख्य अभिनेता रहे आमिर खान, करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय, जॉनी लीवर, नवनीत मिशन और अर्चना पौरन सिंह।

राजा हिंदुस्तानी फिल्म के लिए गाने में अपनी आवाज़ दी उदित नारायण, अलका याग्निक, कुमार सानू, सपना अवस्थी, अलीशा चिनोय और सपना मुखर्जी ने।

0: अभी आप चित्र संसार कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूँ, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूँगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान हैं, बहुत बहुत बुरे इंसान हैं। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं बहुत ही उम्दा इंसान हैं और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी, अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपनी बचपन की ही याद ताज़ा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर
0: जी,
1: ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा ज़रूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज़ में गुजारते थे और हर मौसम का मज़ा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियाँ खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहाँ लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
0: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
1: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब ख़राब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस ज़माने के रास्ते वहां पर है
0: जी।
1: और क्रिएटिव है
0: जी।
1: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया।
0: जी, ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है।
1: जी,
0: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें।
1: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
0: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये।
1: हाँ, और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई, और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले, और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखें, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था, और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे, और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस ज़माने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं, नाटक करता रहा
0: जी,
1: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी,
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे?
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए, और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफ़ी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था, और वो हमारे लिए सब खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
0: जी।
1: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
0: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
0: जी।
1: हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना, और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
0: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
1: जी।

0: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई
1: जी,
0: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
0: जी।
1: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मैं, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
0: वाह।
1: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
0: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
1: जी, और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
0: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
1: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
0: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
1: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
0: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे होता है हेलो फरमाइश।
1: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं किसी होटल में, चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो ले।
0: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
1: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
0: पुरानी
1: बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
0: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
1: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
0: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
1: जी।
0: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
1: जी जी
0: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्ने विकाई चेत। वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी हैं
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरे अनंत जोक कर रहे
1: जी
0: हैं।
1: जी जी उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
0: उसी रोल के लिए
1: नहीं,
0: हाँ।
1: हमारे पास एक नाटक है, जयवंत दड़वी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर।
0: वाह,
1: हाँ। विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है, आप अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए, लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को, और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज़ बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फ़ोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए।
0: जी,
1: मैं तीसरी बार बम्बई आया, तीसरी बार बम्बई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
0: अरे वाह,
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
1: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहाँ गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
0: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
1: जी
0: जरूर सुनेंगे।

उसके बाद मैं ऊपर गया, दारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे और वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव।

उनको लेकर आओ ना। आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरा प्रकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल

0: बापरे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है, बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं आप। ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे, उनका ही वो स्क्रिप्ट था। अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गाँव आया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दावेकर जी मुझे देखकर कहने लगे, आइए आइए बैठिए। लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है, वहाँ से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बार जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया, तो पिताजी को मैं मिलने गया, तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था। वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया, और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था, और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई, और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए, हैंडसअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी, और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूँ तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंडसअप नाटक देखने आए, और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था, और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पर बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे, 2.5-3 सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। 2-2.5 दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था,
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया था।
1: क्योंकि आपके अर्धसत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं
0: जी, जी।
1: और मैं तो कहूं कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया, और कुछ विलन की तरफ

0: देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
1: जी जी जी मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुआ मैं कुछ काम के लिए गांव गया और उस वक्त मुझे वहाँ पे फ़ोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है आप आइए आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे वहाँ भी नाचने लगे कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बहुत अच्छी फिल्म है अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले अभी इधर ही रहो खुद उधर जाने की ज़रूरत नहीं अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बेटक नहीं है। मैं वहीं रह गया
0: प्रीमियर में नहीं गया
1: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी कागज़ के फूल और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी। और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घोंट दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: हाँ, वो उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है
0: जी।
1: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, तो कैसे मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे। तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था, और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
0: जी।
1: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
0: जी।
1: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था, और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
0: जी।
1: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
0: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज़ से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ, और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है। इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती हैं, लेकिन हमें तालियां मिलती हैं।
0: तो उम्र एक अलग चीज़ है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
0: जी,
1: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
0: महारानी
1: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे, ऐसा होना चाहिए
0: जी।
1: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूँगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़िए। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
0: जी।
1: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए, और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफ़ी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली, और उसमें काफ़ी अवार्ड्स भी मुझे मिले
0: जी। जी,
1: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत जरूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है। तो बोले जरूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था।
0: मुझे ऐसा लगता है कि
1: प्रोत्साहित करना था।
0: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
1: जी,
0: वो ही आपका इसमें
1: जी
0: हुनर।
1: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी। और एक ज़माने में मैं जब गया था

0: मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फ़ोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है। लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फ़ोटो निकालने की। तो वो मैंने फ़ोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी। वो जो यादगार हैं, वो यादगारें हमें काम आती है
1: जी,
0: वो बहुत बढ़िया होती है
1: जी।
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
1: जी।
0: वही तो हमारी, मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव, जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
1: जी।
0: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत। देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग। हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा। इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं, आप क्या करना और पसंद करते हैं, या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ, पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने तो ज़रूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है लेकिन नेशनल जियोग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता
1: हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने
2: जी।
1: आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर विवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था, मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहाँ मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक की मायागार नाम का नाटक लिखा।
1: एक की मायागार हो गई जैसे
0: जी जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी,
1: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत।
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी
1: ये।
0: जी, बहुत दिया देने वाले ने तुझको।

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा, और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे चाहती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रोताओं, दिन के 11 बजे हैं। कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद 11:05 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। दोपहर 12:00 एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार हैं समंदर खान। दिन में 1:05 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम होगा घर आंगन। चर्चा होगी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे संतुलित करें। मधुमेह और रक्तचाप प्रबंधन पर भी चर्चा होगी, साथ ही व्यंजन विधि भी आप तक पहुंचाई जाएगी। आज देर में 2:30 हम आपको सुनवाएंगे सोशल मीडिया कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश।

श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा प्रारंभ होगी शाम 5 बजे युववाणी कार्यक्रम के साथ। आज की युववाणी का आकर्षण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी थीम पर आधारित चर्चा होगी, साथ ही ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI पर भी चर्चा होगी। फिटनेस ट्रैकर क्या है और कैसे काम करते हैं, हीटवेव का विज्ञान, PM 15 सूत्री कार्यक्रम, विद्यालयीन शिक्षा की उपलब्धता की सुधारने को लेकर चर्चा होगी। खेती और गृहस्थी कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे, चर्चा होगी हरी बीड़ की पूर्व तैयारी कैसे करें, दूध की बढ़त कैसे लें और छोटे मेमनों की उचित देखभाल। रात 8 बजे आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

रात 9:15 पर राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम होगा। 9:30 पर दिल्ली केंद्र से आपको सुनवाएंगे चर्चा का विषय है। 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत हमारे केंद्र से और 10 बजे शास्त्रीय संगीत।

राजा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। आप सुनिए राजा बाबू फिल्म का गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।

श्रोता इस समय सुन रही हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत कुंज बिहारी के साथ। राजा भैया फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रही हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

उस्ताद राशिद खान की आवाज़ में आप सुन रहे थे जब वी मेट फिल्म का गाना। चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। डीजे पर प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
3: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
3: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
3: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
3: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
3: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
3: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
3: जी,
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
3: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
3: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
3: जी,
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
3: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
3: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
3: जी,
2: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
3: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
2: जी,
3: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
2: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
3: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है गर्मी।
2: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
4: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
5: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 मिल का धागा चोर निकल के भागा।
6: अब तेरी बारी है।
7: अब तुम्हारी बारी, तुम सुना।
6: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
7: तो कहानी सुना दो भाई।
6: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकड़, घड़े में डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
7: अच्छी कहानी थी भाई। कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
6: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
7: हाँ चलो चलो, वहाँ चलो, पे पानी चलो, होगा।
6: चलते हैं।
4: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
8: कौन है?
7: दीदी,
8: कौन है?
7: दीदी।
6: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
7: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
6: हम थोड़ा पानी पी लें?
9: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
7: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
6: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
9: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
7: कौन है आप?
9: नहीं समझे?
7: नहीं।
9: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
1: अब गर्मी अम्मा है।
2: बिल्कुल ठीक समझी। मैं

0: गर्मी, यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
0: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू, यानी यानी
2: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
0: हाँ
1: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
0: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
2: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
1: चलो।
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
2: अरे ये क्या गिरा?
0: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
1: अम्मा, आप क्या छुपा रही हैं?
2: अम्मा, ये आपके हाथ में क्या है?
0: मेरे ही मौसम का एक फल है।
2: दिखाओ ना।
0: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
2: इसका नाम
0: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल, जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
2: स्वाद है,
1: पसंद है,
2: सबसे अच्छा भी है।
1: कौन सा फल है?
2: कौन सा फल?
0: नहीं समझी?
2: नहीं।
0: अच्छा तो फिर सुनो,

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
1: बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
4: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
5: लाओ अम्मा,
4: लो।
3: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: You heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुको, रुको! जाओ वहीं रुक जाओ, रुको!
3: कौन हो तुम?
5: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
3: क्या सूचना?
5: साहब दुश्मनों के बारे में।
3: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
5: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
5: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
5: सर ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर

0: काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
1: क्या देखा तुमने?
0: शब, मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
1: क्या?
0: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
1: कितने लोग रहे होंगे?
0: शब, पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
1: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
0: साहब, मेरा गांव है घर कौन? ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
2: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
3: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
2: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
3: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
2: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
3: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
2: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
3: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
4: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
1: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
4: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
5: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
4: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
1: जी,
6: यस सर।
4: ये मेज के चारों ओर।
1: जी सर।
4: उधर से। हाँ। जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
1: जी सर।
4: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
6: जी सर।
4: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
6: जी सर।
4: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
6: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
4: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
7: यस सर।
4: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
6: जी सर।
4: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
6: सर।
4: कोई शक?
6: नो सर।
4: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
7: यस सर।
1: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
8: धीमे बोलो, धीमे।
1: जी,
8: उन्हें पता ना चल जाए।
1: जी सर।
8: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
1: जी।
8: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
1: ठीक है सर।
8: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
1: जी सर।
8: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
1: जी सर।
8: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे। धीरे।
1: ओके। धीरे।
8: तबे बहुत। बस अब हम चोटी पर आ गए हैं, तो अब रेंगना शुरू करो।
1: रेंगेंगे।
8: जी सर। कोई भी उठ कर नहीं जाएगा, सब रेंगे। आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
1: हाँ सर।
8: एवरीबॉडी रेडी?
1: यस सर।
8: यस सर। अब हथगोला फेंको।
4: गुड। वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसका प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के कलाकार हैं समंदर खान।

श्रोता भी सुन रही थी लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रही थी समंदर खान को। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में दिन का एक बजने वाला है। अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से मुलाकात कर राज्य की जल परियोजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री श्री पाटिल के निवास पर हुई इस भेंट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान यमुना जल समझौते सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में इस परियोजना पर तेजी से काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती से योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पेट्रोल डीजल की बचत पर जोर दिया है। उन्होंने अनावश्यक वाहनों का उपयोग बंद करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या भी कम करने का निर्णय किया है। मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी वाहनों के इस्तेमाल में किफायत बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सीबीआई टीम ने जयपुर में राजस्थान पुलिस के एसओजी की ओर से नीट पेपर लीक मामले में हिरासत में लिए गए 20 से अधिक लोगों से पूछताछ की। एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में भी सैकड़ों लोगों से पूछताछ की है। एसओजी के अनुसार कई लोगों ने कथित तौर पर पैसे लेकर गैस पेपर बेचे, जिनमें से कई प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए थे। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके बाद एसओजी ने आरपीएससी के ही एक लिपिक मान सिंह मीणा को गिरफ्तार किया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इसे करौली जिले की नादोती तहसील से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने जयपुर के 2 केंद्रों पर हुई परीक्षा डमी अभ्यर्थी से दिलवाई थी। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के लिए ये चेतावनी बताते हुए विभाग ने लोगों से दोपहर के समय घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। इस बीच बाड़मेर कल लगातार 3rd दिन भी देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां दिन का तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। फलौदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कोटा और झुंझुनू में भी झुलसाने वाली गर्मी का असर है। राजधानी जयपुर में कल अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री मापा गया। दिनभर धूप की तपिश और लू के कारण सड़कें और बाजार सूने नजर आए। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें योगाभ्यास करवाया जा रहा है। साथ ही योग के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी कड़ी में पाली जिले के कोलीबाड़ा के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में छात्र छात्राओं को योगासन करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। ये आज से प्रभावी हो गया है। सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर आयात शुल्क भी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। इसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति इस साल 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये चुरू केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

बहनों आज को घर आंगन कार्यक्रम ले हाजी रूम में थारी बहन नीलम तो ई भगत रेडियो सुनबा हारी सारी श्रोता बहना को कार्यक्रम आई करूँ गुणो गुणो स्वागत और करूँ मोकली मोकली राम राम। और बहनों आज की कार्यक्रम की शुरुआत करा आप ये मीठे से लोक भजन से।

बहनों के भी जवे है आबाद जिया गर्मी के दरबात करा कर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानु चून। और आबाद जे गर्मी की भेनों बात करा तो गर्मियों में देखो पानी की खपत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जावे है। और जो पीने को पानी है बहनों आपा सब जाना हाँ कि आपने प्रकृति से मिला है, पानी की हर एक बूंद ने आपने बचानो चाहिए। और बहनों अपनी सुबह की शुरुआत ही आप देखा कि अपनी पानी का सागी हो है, चाहे आप निवायु करके पानी पीवा तो सुबह पहले आप पानी पीवा, और जे अपना जो नित्यनेम का काम करा तो भी पानी की जरूरत हो, अपना सारा काम पानी से ही होवे देखो। और जब एक दिन पानी अपना बाहर जे गर्मी के टाइम करे नहीं आवे तो बहनों कितनी मुश्किल हो जावे हर एक काम के लिए। आप जब एक एक बाल्टी बारू भर लिया नहीं पी के दौरान अपन लगे कि आप पहले ही पानी बेवजह बहायो, जब आप घर खूब सारा पानी हो बहनों तो जब आप पानी की यहाँ देखा को नहीं कि आपने पानी बचाणो है आप पानी कम काम में लेवा, जब हो जब आप पानी खूब सारो जो कोई भी काम करा भी मैं टूंटी खोल ली काम कर लियो बर्तन मांजा तो आप जी आजकल रसोई हम सिंह बनेड़ी टूंटी चलाई बर्तन मन जा। और जे अबार गर्मिया में जे आंधी भी खूब आवे भेनो आंधी आवे तो ले पाइप दौड़ना लग जावा, पर जब भेनो पानी खत्म हो जाओ जब देखो आपने कितनी परेशानी हुआ तो आप शुरू से ही ध्यान रखा कि एक तो आप जब भी बर्तन और मन जा तो अगर पानी टप में भर करके फिर अगर बर्तन आप धोवा तो देखो पानी कम लाग सी। और एक साथ ही जी अबार आप बात करी आंधी आवे तो बिके दौरान भी आप पहली सूखी झाड़ू से सारे अच्छे से साफ सफाई कर लेवा ऊपर की चीज माटी भी देखो कितनी कितनी पेड़ा बस सब झाड़ लेवा अच्छे से यहाँ बारी काटने के बाद में। और जी बाल्टी में गाल पोचो लगाऊंगा भेड़ो तो भी मुझे देखो पानी कम लाग सी और घर भी देखो अपनो साफ हो जैसी। तो इस तरीकों आपने पानी की बचत करनी चाहिए। और कई परिवार में तो भेड़ो आप देखा टाबर जो है वह हो चाहे बडोड़ा हो तो वह भी मंजन करने लग गए तो देखो जितना ब्रश करे इतना नल खुलो ही छोड़ दे तो वो पानी बेवजह ही बह गए वो कोई काम को नहीं आयो। और गर्मियों में सावर से नहावे भी है टाबर देखो टाबर जो नहाने लग जाए छुट्टियां में जे ऐसा इकट्ठा होड़ा हुआ है तो दो दो चार चार टाबर नहान गिर में बढ़ जाए देखो निकलने को नाम कौन ले हुए तो बाप भी अपन ही भेड़ो सावधानी रखनी है अपना टाबर है तो बन देखो समझाणो है कि बेवजह थे तो पानी नहीं खिंडाओ नहाओ पर एक एक बाल्टियों सहजना जिया नहा लो तो भी से की है पानी की बचत हो सी। और गाड़ियाँ की भेड़ो बात करा तो कई परिवार में जहाँ गाड़ी धोए तो वह भी देखो आपके पाइप लेके धोने लग जाओ तो वो पानी कोई काम को नहीं आयो तो गाड़ी भी देखो बाल्टी में पानी लेके पुच्चे ऐसे अच्छे से साफ कर सके फिर सूती कपड़ों अच्छे तरह गाड़ी ने पूछ दो गाड़ी साफ हो जैसी। तो इस तरीके को आप पानी की बचत आप कैसका कभी मेरे एकली करनू क्या होगा नहीं बहनों यहाँ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखेंगा एक एक बहन अगर यहाँ पानी की बचत करेंगे तो आप पानी ने जरूर बचा सकेंगा। और ये आप जे दाल चावल सब्जी धोवा तो वो दोड़ो पानी भी आपने जे घर गमला है पेड़ पौधा लाग रहा तो बम वो पानी गाल सका हाँ। और कई बार भेड़ो आप जब रस्ते में जावा या सार्वजनिक स्थान पर जावा कोई पार्क है बाग बैठे अगर घूमने जावा रस्ते में भी देखा अगर टूंटी टपक रही है पानी भी में से निकल रही है तो आप बिना भी ठीक करावा और घर भी आपने जे नल खराब हो गए तो बिना तुरंत ठीक करावा ताकि पानी ना आप बचा सका हाँ। और एक साथ ही भेड़ो आप बार की जो बात करा तो जो भी भेड़ नया मकान बनावे तो भी मैं आपका मीठे पानी के टैंक भी जरूर बनावे। अब बरसात को पानी भी मैं टैंक में जहाँ आप इकट्ठो कर रखा देखो मीठो पानी आपने साल भर तक पीने के लिए वो पानी काम आ सके। और एक साथ ही भेड़ो कई बार आप रस्ते में देखा पाइप टूटड़ हो और जो पानी आवे बिक दौरान वो पानी व्यर्थ ही बेहतर रहे और वो पानी देखो कोई काम को नहीं आवे जे रस्ते में अपन कोई पाइप टूटड़ो है कोई कारण से टूंटी कोई खराब है तो बिना आप ठीक करवावा अपन नहीं करावा तो आपने जो वार्ड का पार्षद है बना कह करके भी नल ने ठीक करवा लेवा बतलावा तो भेड़ो अपनी जारी है पहली सुना मीटो से लोकगीत।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ।
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
0: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413366097।
2: अब भेणो बात करा अपा सौंफ की। सौंफ भेणो गर्मियां में कैस कहाँ अमृत से कम को नहीं हुआ है। गर्मी में अपा ने जद लू लग जावे तो भी के दौरान अपा सौंफ जो है रात ने भिगो करके भी की ठंडाई बनावा तो आ पीढ़ी अपने लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया रहे। और जो चिलचिलाती धूप पड़े भी के दौरान भी अपा भेणो बारे जावा तो बिशे पहलू अपा जिया सौंफ की बनेड़ी ठंडाई अगर पी लेवा तो इसे अपने ने तो आप बारे जाऊंगा जब तावड़ो लगेगो और नहीं कई बार जी हाँ जी घबराने लग जावे।

या अपना एसिडिटी हो जावे, एपच की शिकायत हो जावे तो भाभी कोनी होएगी। अब अपा बात करा कि ठंडा ही अपा घर बनावा किया। बहनो घर अपनी रसोई में देखो सौंफ मिल जावे है, लौंग है, काली मिर्च है, इलायची है और बादाम लैडा है, तो वह भी आपा भी मैं मिला सका हाँ। और एक साथ ही खसखस अगर आपने लिया रखी है और नहीं भी लिया रखी है, थोड़ी सी खसखस लिया के भी आपा भी मैं मिला सका हाँ। गुलाब की पत्तियां हैं, ऐसा सब मिला करके आपा एक ही ठंडाई घर बना करके रख सका हाँ। आपा ने जिया सूखी सारी चीज़ मिला करके रख लेवा और डड़ा मिसी जो है वह अलग भी रख सका हाँ, नहीं एक अंदर मीठा के हिसाब से भी आपा इन्हें मिला के रख सका हाँ। और रात ने आपा इन्हें जब तक संभव हो अगर मट्टी के बर्तन में भिगो देवा तो आ कैस का अपने लिए पीढ़ी बहुत ही ज़्यादा गुणकारी रहेगी। तो मट्टी का बर्तन में आप जिया थोड़ा पानी में इन्हें भिगो करके रख देवा, और मट्टी को बर्तन नहीं है तो आप कोई कांच का बर्तन में इन्हें भिगो करके रख देवा। जिया दो छोटी चम्मच आप भिगो करके इन्हें रात में रख देवा, और सुबह भी मैं चाहे मिक्सी में पीसा तो मिक्सी में पीस लेवा, और अगर कहीं बना चावे भी सील लोडे पर अगर पीस करके कि ठंडाई बनावा तो भी वह बना सके है। और भी के बाद में आप पीसने के बाद में आपा जिया चाल ली छान ली तो फिर इमा आपा दूध मिला करके इको और भी स्वाद इन्हें बढ़ा सका हाँ। और आज जब दूध मिलाने के बाद में भनो इतनी स्वाद हो जाएगी पीने में और ठंडी जिया होएगी, और थोड़ी बर्फ अगर चाहवा तो भी गिर सका, और नहीं तो इन्हें थोड़ी देर फ्रिज में रख देवा तो और भी ठंडी हो जाएगी। ठंडी ठंडी अपना जो टाबर है वह भी इन्हें चावश्यू पीसी। और भेणों आपा सब जाना हाँ कि तासीर तो ठंडी रवई है, ई सूप पीने से अपनो वजन भी नियंत्रित हो है। और जियाँ कई बार अपने मुंह में दुर्गंध आ जाए तो बिके दौरान भी आपा सूप है चावा तो सूप ने पीस करके रख सका हाँ, और नहीं तो इन्हें जिया सीधी सूप में आपा छोटा छोटा मिश्री का चाहे डड़ा मिश्री है तो भी ना फोड़ करके मिला लेवा, दाना मिश्री है तो भी मिला करके रख लेवा, और खाना खाने के बाद में एक चम्मच आपा रोज की सूप ले लेवा तो इससे अपनी पाचन क्रिया जो है दुरुस्त रहसी। और आंखा के लिए भी भणो सूप को यो जो ठंडाई पीढ़ी है वह बहुत ज़्यादा गुणकारी हुआ है। अब जिया गर्मियों में अपनी आँख लाल रहनी शुरू हो जाए, आँखा में जलन और हो तो आपा आ सूप पीवा तो इशू अपनी जो है समस्या है आँख की वह भी कोनी रहसी। और एक साथ ही भेणों आपा जिया बात करी सौंफ की, तो सौंफ की ठंडाई बनाने के बाद में ज़्यादा देर तक बिना नहीं रखा, नहीं तो कई बारी खराब होने को डर रहा, सूखी आपा रख सका हाँ। अगर पीस के अगर आप तैयार कर ली तो बिना 1.5-2 घंटा के दौरान अपन ने पी लेनी चाहिए। और एक साथ ही भेणों सौंफ के सागे सागे आपा जिया एको ठंडाई तो आपा बनाई रखा, अगर आपा चाहवा कहीं ने गिल्ली बना करके रखा तो भी के लिए आपा ने जिया एक अंदर जो चीज़ है ऐसा पीस करके और कोई एयर टाइट जिया आपा बोतल के अंदर डाल करके रखा तो 2-3 दिन तक जरूर काम ले सका। पर भी के अंदर आपा जिया मिस्ट्री नहीं मिलावा, मिस्ट्री आपा नहीं मिलावा, खाली सूखी बना करके इन्हें पीस करके रख सका, और जब आपा ने बनानी हो तो आपा एक अंदर मीठो मिला करके आपा जो ठंडाई है आ तैयार कर सका हाँ। बड़ो बतलाऊँ तो आपा और भी करांगा, पहले सुनाओ मीठो सो लोकगीत।

भेणो अभी अपा बात करी सौंफ की, तो सौंफ अगर दूध मिला के अपा रख दियो तो बा अपा ज्यादा बिया देर तक कौन रख सका। बाकी सुखी अगर पीस करके अगर अपा रखा तो बिना अपा रख सका हाँ। और भेणो अब बात करा अपा अपनी, आज के टाइम भेणो हर एक अपनी बहन जो है बा काम का जी है, और महंगाई के जमाने में देखो एक ही कमाई से अपनो घर खर्च चालनो भी मुश्किल हो जावे। तो हर एक बहन कोई भी विभाग में जाओ देखो कोई ना बा कोई ना कोई बा काम जरूर कर रही है। अगर घर की भेणा की बात करा देखो घर में ही बैठी बैठी भेणा है जबकि घर को आपो काम जल्दी करके सिलाई बुनाई बना रही है तो वो कर रही है, कई चीज़ जो दरी बनाना काम है और कई तरीके की जो आजकल पेंटिंग चल रही है वह सब भी वह काम कर रही है। और भी मैं थोड़ा अगर वह प्रशिक्षण लेना पड़े तो वह भी अबार जिया छुट्टियां में समर कैंप लग गए तो वह मैं जो लेकर के जो भी बाने चीज़ सीखनी है बिना और वह सीखना चाहो तो प्रशिक्षण लेकर के भी काम ना आगे बढ़ा सके हैं। और अब जिया बात करें अपनी जो बहन बाहर जावे है ऑफिस में काम करे हैं, तो बने बहनों आपकी जो प्रोफेशनल और पर्सनल जो लाइफ है भी में संतुलन बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो कि है वह एक तरफ काम करती रहेगी तो दूसरों काम में वो सही टाइम पे को नहीं होगो। और बहना देखो जो दोनों काम करे है तो बांधे को भाग दौड़ भरो जीवन तो जीणो पड़े ही है। वह सुबह जावे जब देखो घर का जो जरूरी काम है वह बने करना ही पड़े। और सबसे पहले अपा अगर काम का जी हाँ तो आपने काम की लिस्ट बना ले वहाँ जो जरूरी काम डेली का है वह आपा करा, और इसके बाद में ऑफिस में भी जो पहली जो आपने काम करना है वी की लिस्ट आपने सामने होनी चाहिए, और जो जरूरी काम अपने करना है वह पहले करा। या नहीं कि आपा दूसरों काम देखने लग जाओ और अपने जो अर्जेंट काम करना है वो आपा कर कौन पावा, और इसके चक्कर में आपा कई बार कि अपनी भेणा जो है तनाव में भी चली जाओ, तनाव हो जाओ माने कह ले मेरे वो काम तो पूरा ही को नहीं हो मैंने सर के कैसी या वो काम मेरो अधूरो रह गयो है इन्हें सर मैंने 2 दिन को टाइम दिया अब 4 दिन हो गया। तो भेणो ऑफिस को काम आपा ऑफिस में ही करने की कोशिश करा, आ करा कभी आपा अपने जो समय सीमा तय कर ले वहाँ का इतने समय में अपन वो काम अपनों करके रखनो है। और इश्यू के है एक तो अपा सगे समय प्रबंधन भी अपा अपनावा तो एक साथ ही अपनो जो काम अपने पहले करना है वो भी अपने ध्यान रहोगे, और लिस्ट बनाई रखांगा तो ध्यान रहोगे तो अपने सबसे पहले जाके ऑफिस में वही काम करना है दूसरा काम ना अपा को नहीं छेड़ांगा तो अपनो काम टाइम पर हो जैसी। और अपा घर है ऑफिस को काम नहीं लेके आवा क्योंकि घर का काम भी अपने करना है भेड़ो, एक जो कह सका कि अपनी जो भेड़ा है वह घर की दूरी हो है, घर में चाहे टावरा की देखभाल की बात हो या घर में जो बड़ा बुजुर्ग है वहाँ की देखभाल की बात हो तो बस सारा काम देखो बानी करना पड़े, टाबरा की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी अपन ने सोचना पड़े देखना पड़े कौन सा टाबर का पेपर है तो बिकी भी अपन बीच में टाइम निकाल करके तैयारी करानी पड़े, और जे बड़ा टाबर है तो बने भी इकट्ठे अपन पढ़ाई वास्ते भेजना है, ऐ सब जिम्मेदारी अपनी ही बहनों ज्यादा हो है। और अपनी बहना देखो ऐसा ही जिम्मेदारी बेखो भी निभावे भी है, पर हर एक काम अपा टाइम पर कर लेवा तो अपा बेवजह जल्दबाजी में अपना जो कई बार काम गलत हो जावे वह गलत को नहीं होगा। और इसके साथ ही बहनों अपन ने आराम करना भी जरूरी है, अपा अपने लिए भी टाइम जरूर निकाला थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपा एक तो सुबह सुबह जो योग है व्यायाम है वह जरूर करा, इससे के है अपनों जो ऊर्जा को उस तरह वो बढ़ो रहेगो और अपा के अगर स्वस्थ रहेंगा तो हर एक काम अपा अपना टाइम पर कर भी लेंगा। और कई ऐसा गई के साथ ही बहनों अपनों जो रात में सोना को टाइम है वो सही रहना चाहिए, अपा देर तक अगर रात में जागेंगा सुबह टाइम से अपनी नींद नहीं खुलेगी और अपन देखो हर एक काम में लेट होगी फिर अपने हड़बड़ाहट हो जाओगी फिर आप ऑफिस में भी जाओ तो बैठे भी अपने से गलतियां हो जाए, तो कोशिश यही करा कि हर एक काम आप टेम करा टेम से खावा टेम से सोवा टेम से ही जागा ताकि हर एक काम आप सही टेम पे हो सके। और भेणो कई बार अपन ने

वो नहीं कर सकूँ। आपा ले ले वांग अतिरिक्त काम तो देखो फिर तो सगे तो अपनों घर को काम है वो भी आप जा करके करेंगे तो अपनों सारो या दिमाग भी काम में रहोगे तो वो काम मैंने करना हो वो मैंने करना हो तो आपा ने तो घर को काम सही ढंग से कर सकेंगे ने आपा जैठे काम करें हाँ बैठे काम कर सकेंगे। और एक साथ ही बहनों हर एक आपा भी आई कोशिश करा क्या एक तो काम की अगर लिस्ट होगी तो आपा सुबह जो जरूरी काम है बही करा कई भेणा की है और जो जरूरी काम है तो छोड़ दे दूसरे काम में लाग जाओ फिर हड़बड़ाहट हुआ फिर कहो अल्लाह मेरे तो आई चीज छूट गई। और देखो भाई टाइम से फिर न तो वह नाश्तो करे टाइम पर और न वह टाइम पर खाणो खावे इससे वह बीमार रहनो शुरू हो जावे। तो आप अपने खाने पीने को भी पूरा ध्यान रखा और अपना जो काम है जो जी काम ना आपको पहली करना है बिना प्राथमिकता पहली देवा तो अपना हर एक काम टाइम पर हो सी और आप स्वस्थ भी रस्या बनो बतलाऊं तो आपने यूं ही जारी है। अब सुनाए मिठो सो लोकगीत।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: भेणों, आजकल आप जब अपनी भेणाओं बातचीत करा तो देखो अपनी भेणाई कवे, कभी मेरे तो आजकल बीपी रहने लग गयो, कई भेणा का बीपी लो रवे तो कई के हाई रवे, और कई बहन मधुमेह है कि भी देखो शिकार हो जावे, कई मार तो देखो वह भेणा कोई मार तो भैया इससे शुगर रहने लग गई। तो बहनों अपा सबसे पहली बात तो अगर अपन स्वस्थ रहनो है तो अपा खान पीना को पूरा ध्यान रखा। आज के टाइम की बात करा तो बहनों जंक फूड और जो तली भुनी चीज़ें आप ज़्यादा खावा हाँ, जितो अपा तेल खावा हाँ, जितनी चटपटी चीज़ खावा हाँ, तो बिशु देखो अपने जो है बीपी की शिकायत रहनी शुरू हो जावे। पहले अपा ये बीमारियाँ कोई कोई में सुना करता, कभी बी कह बीपी रहे या तो कोई बहुत ज़्यादा मोटो हो तो जब भी कह बीपी हाई रहा कर तो। और अब की अगर बात करा बहनों, चाहे पतलो हो चाहे मोटो हो, तो कभी ती को नहीं कह बे तो भी सुबह पहली जो उठूँ जो मेरा हाथ गोडा समय को नहीं, आँख बंद उड़ती रहे मेरे सीरी कौन समय, और फिर जब जाँच करावे तो भेणों भी मैं बीपी आ जावे। और इनमें भेणों अपा अगर चाहवा तो देखो मधुमेह और उच्च रक्तचाप जो बीपी हो आना अपा नियंत्रित रखना चाहवा तो अपना खाने पीने को पूरा ध्यान रखा, संतुलित आहार अपने लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कई भेणा के जी अगर बीपी लो रह रही है तो बन जिया नमक चीनी को पानी है वो पीनो चाहिए, और एक साथ साथ है घूमने को पूरा ध्यान रखना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वे खानी चाहिए, और जिके जिया बीपी हाई रहे तो बने भेणो नमक कम खानो चाहिए। सब्जियां तो हरी देखो अपने सबने

चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहे। और फाइबर युक्त जो को भोजन है बहनों वो आपने जरूर करना चाहिए। कहने को मतलब वो ये बनो कि जो मोटो अनाज है वो आपने खाने में शामिल करना चाहिए। और मोटे अनाज में जी आप बात करी बाजरो है, बाजरिया गर्मियों में आप राबड़ी के रूप में खा सका, खिचड़ी के रूप में खा सका, और एक साथ ही रागी को आटो है जो बेजड़ का आटा है, चना को ऐसा मिला करके भी आप बनो घर आटा पिसवा सका हाँ। और एक ही जो है वह रोटी बना के खावा तो देखो अपने स्वाद भी अपना बढ़ावा है और आप स्वस्थ भी रह सका। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजा फल है वह भी आपने जरूर खाना चाहिए। अपा अगर मोटो अनाज खावांगा और अंकुरित अनाज जो है भी को आपा सुबह नाश्तो करा तो अपनी पाचन क्रिया जो है बनो बस सही रहेगी और इससे अपनी जो है शुगर लेवल है वो भी कोने बढ़ेगो। पर्याप्त पानी पीनो भी बहनों अपने बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी अगर आपा पूरा पियोगा तो देखो अपनो खानो पीड़ो जो भी है वो आसानी से पच जैसी। और व्यायाम भी करनो बहनों अपने स्वस्थ रहने के लिए करनो बहुत ज्यादा जरूरी है। 30 मिनट तक और ज्यादा नहीं कर सका तो 30 मिनट तक आपा तेज कदम से अगर वॉक करांगा तो इश्यू भी अपने फायदों मिल सी। और बहनों अगर कई बहना के जिया वजन ज्यादा बढ़ रहे है तो बने भी जो है बीपी की शिकायत रवे है तो बने वजन जो है कम करना चाहिए। और बहनों समय समय पर डॉक्टर से परामर्श भी आपने जरूर लेना चाहिए। अगर बीपी ज्यादा है या कम है तो बीपी के अनुसार आपने दवाई डॉक्टर बतावे तो वह भी आपने टाइम पे लेनी चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सका। और बहनों अब जो है घड़ी आपने और बात करने की इजाजत कौन देवे तो आज का घर आंगन कार्यक्रम देवांगा टीवी राम और फिर मिलने ती मैंने देव सीख राम राम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री मंत्रियों अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश। कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुंज बिहारी का नमस्कार। श्रोताओं, दिन की 2:25 पर फेसबुक पर हमने एक पोस्ट लगाई इंस्टेंट फरमाइश की और हमारे श्रोताओं के धड़ाधड़ कमेंट्स आना शुरू हो गए। और आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहला कमेंट जिन श्रोताओं ने भेजा है उनके नाम हम आपको बता देते हैं। आप हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। आपने सुनना चाहा है बेटी बेटे फिल्म का गाना और इस गाने के साथ एक और नाम हम शामिल करेंगे। आप श्रोता हैं भवानीपेट सोलापुर से लिखते हैं विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी आरव, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता आरोही, प्रियांशी, सोनी। तो आप श्रोताओं की पसंद पर हम प्ले कर रहे हैं आकाशवाणी चूरू के स्टूडियो से ये गीत फिल्म बेटी बेटे से।

और श्रोताओं आपको बता दें, आप जाइए हमारे फेसबुक पेज पर आकाशवाणी चूरू और वहाँ पर आपको ताज़ा तरीन एक पोस्ट मिलेगी इंस्टेंट फरमाइश की, वहाँ पर आप अपना कमेंट भेज सकते हैं।

जिन श्रोताओं ने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है उनको बता दें, आपको फेसबुक पर जाना है, हमारा आकाशवाणी चूरू का पेज आपको सर्च करना है, और यदि आपने फॉलो कर रखा है तो आपको जल्दी से हमारी पोस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद लिखकर भेजनी है। आपसे निवेदन है, एक बार में सिर्फ एक ही कमेंट भेजें।

श्रोताओं, अगला गीत हम ले रहे हैं, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले, और इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सब। आप सभी ने कमेंट किया है, भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा, हमीरी कलां झुंझुनू से, महेश जानू बहादुरवास झुंझुनू से, सुखजिंदर बुगालिया चिडावा जिला झुंझुनू से, बलजीत कांटीवाल बीदासर जिला झुंझुनू से, नई सड़क चूरू से राजा नंदवाणी, रजत रोहित, केशव मुकुल, मनीष सुमित, साक्षी और किरण नंदवाणी, और ये हमारे श्रोता हैं गुदड़ी बाजार चूरू से जगदीश मंडल, अभिषेक मंडल, राकेश कुमार दूधवा मीठा चूरू से, अरविंद खारडिया लदड़िया चूरू से, और आप श्रोता हैं निशांत फुंडे, ओम प्रकाश, मानसी, चेतन, आप सभी लिखते हैं महाराष्ट्र से। और ये अगला कमेंट हम शामिल कर रहे हैं, हमारे श्रोता हैं रिंगनिंग छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का। आप श्रोता लिख रहे हैं बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से, विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा और इनका पूरा परिवार। एक और श्रोता है कस्बा उगेती बदायूं से, देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज बजाज, प्रिंस प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता और इनका पूरा परिवार। आप सभी श्रोताओं की पसंद को पूरा कर रहे हैं, ये गीत है फिल्म जब जब फूल खिले से। और इस गीत के साथ तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, और जो श्रोता कमेंट भेज रहे हैं आप सभी के नाम हम शत प्रतिशत रूप से शामिल करेंगे। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा ये है कि जिन्होंने पहले कमेंट किया है उनका नाम पहले शामिल होगा।

या लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, परखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, आप श्रोता हमें लिख रहे हैं। गांव खोकरा वाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास, रोशनी और शगुन बारासा, और ये हमें कमेंट मिला है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन और मंगलबेन शाह, राजेंद्र शाह। आप श्रोता हमें लिख रहे हैं उन्हेल जिला उज्जैन से भेरूलाल वाकतरिया, धाकड़, भोला, प्रवीण, रियांश और प्रतीक वाकतरिया। तो श्रोताओं, पहले गीत को हम थोड़ा प्ले कर देते हैं, कुछ और नाम भी हम पढ़ना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में कमेंट मिला है सरिता मोदी के नाम से, और अगली जो पसंद हमें भेज रहे हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी घटे, जयश्री, अंजलि और बाला साहेब। और आप श्रोता है चर डोगरी पिपरिया से लिखते हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन और श्रीमती कुमारी साहू और इंद्राणी। आप श्रोता है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश जौहरी। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना और केशु विधान खुराना।

और श्रोताओं, आपका प्यार बेशुमार है, क्योंकि अब तक 42 से अधिक कमेंट्स हमें मिल चुके हैं और थोड़ा ही समय हुआ है इस पोस्ट को फेसबुक पर आए। और तमाम श्रोताओं को हम आश्वस्त करेंगे, आपने जो भी कमेंट्स भेजे हैं उनको हम शामिल करेंगे।

श्रोताओं, आप सुन रही हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश कुंज बिहारी के साथ। अगला गीत ले रहे हैं दोस्ती फिल्म से और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। शक्तिनगर उदयपुर से लिखते हैं जगदीश माटा। अगला कमेंट हम ले रही हैं बेरडी एमपी से, लिखते हैं हुकुम करम कर सुनीता, हार्दिक और प्राची। और ये हमारे श्रोता हमें लिख रहे हैं ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड से, लिख रहे हैं उदय भानपाल, जय हिंद दीक्षा प्रतीक्षा। आप श्रोता हमें लिख रहे हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, लिखते हैं मोहम्मद यासिन अनजान, सैमा नवाज, हसन नवाज और बाबू अहद। और ये कमेंट हमें मिल गया है गांव जाखोल से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। हमारे श्रोता हमें कमेंट भेज चुके हैं। आप श्रोता हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरूर निशा सबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुपना और यश मंसूरी। आप श्रोता हैं रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। और ये कमेंट हमें मिला है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। ये कमेंट हम पढ़ रहे हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से मिला है पीएस नहावकर, निर्मला विशाल नहावकर। आप श्रोता हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा। फजल का पंजाब से लिखते हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी और शालिनी खेड़ा। ये कमेंट मिला है गोविंदपुरा नीमका थाना से दत्तार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत का। आप श्रोता हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी से लिखते हैं आलोट जिला रतलाम एमपी से है जगदीश धाकड़, नयमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवंगी धाकड़। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक। आप श्रोता हैं धानोरा विटाली से लिखते हैं भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम और सुंदरम गुप्ता। देखिए बहुत सारे कमेंट्स हमने शामिल किए हैं और हमारा इरादा ये है कि इतना अलर्ट हमारे श्रोता हैं तो हम भी उनकी ख्वाहिश को पूरा करें और इंस्टेंट ही फरमाइश सुनाएं। दो बजकर 55 मिनट तक आप हमें कमेंट भेज सकते हैं। जिन श्रोताओं ने कमेंट भेज दिया है, जिनके नाम शामिल हो गए हैं, वो अन्य श्रोताओं के नामों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करें।

श्रोताओं, इंस्टेंट फरमाइश में अगला गीत हमने लिया है श्री 420 फिल्म से और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ से लिखते हैं वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा, कुछ और नाम शामिल करेंगे। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली धनंजय, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। मुताला जिला बुल्ढाना से लिखते हैं विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी और ओम कुमार। ये श्रोता है गांव भटूनी जिला मंदसौर से लिखते हैं ईश्वरलाल मेहर, सुमित्रा रेहांश, सृष्टि और इनका पूरा परिवार। चक 5 MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल और डॉक्टर सुनील। और ये श्रोता है गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ से लिखते हैं अनूप सिंह नाथावत। आप श्रोता है देवरी भाटापारा से KR साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से लिखते हैं हरदेव, मिका, बलविंदर और उनके सभी सदस्य। अनारकली बाजार जगराऊ पंजाब से लिखते हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या। आप श्रोता हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा। ये कमेंट हमें मिला है, लिखने वाले श्रोता हैं सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी और हेयांश कुमार चंदन। आप श्रोता हैं सविता शर्मा उदयपुर राजस्थान से लिख रही हैं और संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत भरत, आप सभी लिखते हैं चौक गोराया जालंधर से। ये कमेंट हमें मिला है सीता मऊ रोड नाटाराम से दशरथ सेन का। आप हमें कमेंट भेज रहे हैं बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी। ये श्रोता हमें मिल रहे हैं राजपूत क्लब रेडियो श्रोता संघ ग्राम ढकिया केसरपुर से लिखते हैं अनिल कुमार राजपूत, भगवान दास, मदन लाल, संतोषी देवी और प्रिया वर्मा। कमेंट मिल रहा है कलानोर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का। आप सभी के पसंद को पूरा कर रहे हैं ये गीत हमने लिया है फिल्म श्री 420 से और अब कुछ ही समय बचा है कमेंट भेजने के लिए, हमें इंतजार है।

0: श्रोताओं, अब चलते चलते हम भी कार्यक्रम के अंतिम गीत तक पहुंच गए हैं। लाइनें बंद हो गई है कमेंट भेजने की। अगला गीत सुना रहे हैं आपको इलाका फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से लिखते हैं। पवन लिम्बा अमरपुरा फजिलका पंजाब से कमेंट हमें मिल गया है और ये हमारे श्रोता हैं फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा से लिखते हैं सुरेश चोरसिया, श्रीमती सरोज, सुबोध सलोनी, संजू और इनका पूरा परिवार। आप हैं जवाहर नगर उदयपुर से लिखते हैं बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी और विनीत नाचानी। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत और मनु ये कमेंट है। बुलढाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोध बड़े, अनीता और रमेश राव का। आप श्रोता हैं पदमपुर जिला श्री गंगानगर से लिखते हैं मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमिता होजा। आप श्रोता हैं लिखते हैं मऊनाथ भंजन, यूपी से लिखते हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा। मऊ से लिखते हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। और ये अंतिम कमेंट आज के कार्यक्रम का गांव हाडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद को पूरा कर रहे हैं इस गीत से। फिल्म का नाम है इलाका और बहुत ही खूबसूरत गीत है।
1: प्यार से भी ज्यादा तुझे

0: तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश, और हमने आधे घंटे के इस कार्यक्रम में 67 आपके कमेंट्स को शामिल किया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। अनुमति दे कुंज बिहारी को नमस्कार।
1: तुझे

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी के साथ हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.7 FM और लेकर हूँ हाजिर आपका फेवरेट प्रोग्राम युवाणी, जो है युवाओं की आवाज़, सपनों की उड़ान और नई सोच का शानदार कार्यक्रम, जहाँ बातें होती है जुनून की, प्रेरणा की, करियर की, कला की और उन विचारों की जो बदल सकते हैं आपकी दुनिया। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन 100.7 FM पर। प्रोग्राम में शामिल होने वाले सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार।

दोस्तों 100.7 FM के मंच युवाणी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और अब वक्त हो चला है सेगमेंट का जहां बात होती है नए विचारों की, नई खोजों की और विज्ञान की अनोखी दुनिया की। जी हां दोस्तों, शुरू हो चुका है आपका सभी का प्यारा सा सेगमेंट विज्ञान धारा। दोस्तों विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, हमारे आसपास की हर छोटी बड़ी चीज विज्ञान से जुड़ी हुई है। आसमान में उड़ते विमान, जेब में रखा स्मार्टफोन, मौसम की जानकारी, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि हमारे शरीर की जो कार्य प्रणाली है वो भी विज्ञान का ही कमाल है। विज्ञान धारा में हम हर बार लेकर आते हैं ऐसे टॉपिक्स जो आपके मन में जिज्ञासा जगाए, नई सोच पैदा करे और विज्ञान को आसान और रोचक अंदाज में समझाए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों तक हम बात करेंगे इसी ज्ञान की, तकनीकी और नई खोजों की दिलचस्प यात्रा के बारे में। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के खास विषय की ओर, तो वो रहेगा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। जी हाँ दोस्तों, ये जो तकनीक है वो एक ऐसी तकनीक है जो केवल साइंस फिक्शन फिल्मों में ही दिखाई देती है, लेकिन आज ये वास्तविक दुनिया में तेजी से कदम जो है वो बढ़ा रही है। सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ अपने दिमाग की जो शक्ति है उससे कंप्यूटर चला सके, व्हीलचेयर को नियंत्रित कर सके, मोबाइल पर मैसेज लिख सके या केवल सोचकर ही रोबोटिक हाथ हिला सके तो कैसा लगेगा। यही कमाल है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI का। जी हाँ दोस्तों, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी तकनीक है जो इंसान के दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा संवाद करती है। सामान्य रूप से हम किसी मशीन को चलाने के लिए अपने हाथों का, आवाज या टच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन BCI में मशीन हमारे दिमाग की जो एक्टिविटीज होती है उनको पढ़ती है और उसी के बेसिस पर काम भी करती है। यानी यहाँ शरीर की जरूरत कम हो जाती है और दिमाग जो है वो सीधे आदेश देने लगता है। ये तकनीक विज्ञान की दुनिया में किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जा रही है। और अब सवाल उठता है कि आखिर हमारा दिमाग संकेत कैसे भेजता है। दोस्तों हमारा मस्तिष्क जो होता है वो अरबों न्यूरॉन से बना होता है। जब हम कुछ सोचते हैं, महसूस करते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं तब न्यूरॉन्स के बीच छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होते हैं। BCI तकनीक इन्हीं संकेतों को रिकॉर्ड करती है और इसके बाद कंप्यूटर जो होता है वो इन संकेतों को समझकर उन्हें कमांड में बदल देता है, यानी कि आदेश में बदल देता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कोई इंसान जो है वो अपने हाथ को हिलाने के बारे में सोचता है तो BCI उस दिमागी संकेत को पहचानकर रोबोटिक हाथ को हिला सकता है। और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को समझने के लिए अगर हम इसके इतिहास पर भी नजर डालें तो 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने पहली बार ये विचार प्रस्तुत किया कि दिमागी संकेतों को मशीनों से जोड़ा जा सकता है। उस समय ये केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित था, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर और न्यूरोसाइंस का विकास हुआ वैसे वैसे ये तकनीक जो है वो आगे बढ़ती गई। आज दुनिया की कई बड़ी रिसर्च संस्थाएं जो हैं, टेक कंपनियां जो हैं, वो BCI पर काम कर रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ये तकनीक चिकित्सा, शिक्षा, रक्षा, मनोरंजन और संचार के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। इसके कितने प्रकार होते हैं, ये किस तरीके से महत्वपूर्ण हो सकती है या फिर किस तरीके से हर फील्ड में कैसे काम करती है और क्या क्या नई संभावनाएं पैदा कर सकती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ।
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
0: अनुभवी स्टाफ, सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल बिसाऊ 9413366097।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
3: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का खास सेगमेंट रहता है विज्ञान धारा, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI के बारे में। तो हमने बात की कि किस तरीके से ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस काम करता है, इसका इतिहास क्या रहा है और ये किन किन क्षेत्र में तकनीकी रूप से क्रांति ला सकता है। दोस्तों अब बात करें BCI के, मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक होता है इन्वेंसिव और नॉन इन्वेंसिव। इन्वेंसिव BCI में छोटे इलेक्ट्रोड्स को सर्जरी के माध्यम से दिमाग के अंदर लगाया जाता है और इससे बहुत ही सटीक सिग्नल मिलते हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी उतना ही होता है। दूसरी ओर बात करें नॉन इन्वेंसिव BCI में इलेक्ट्रोड्स को सिर के ऊपर लगाया जाता है और ये जो तरीका है वो सुरक्षित होता है, लेकिन इसके अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं। आज ज़्यादातर रिसर्च नॉन इन्वेंसिव तकनीक पर तेज़ी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये आम लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी और सुरक्षित मानी जाती है। अब बात करते हैं BCI के सबसे महत्वपूर्ण उपयोग की, तो वो है चिकित्सा क्षेत्र में। दोस्तों दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो लकवा, रीढ़ की चोट, ALS जैसी बीमारियों या दुर्घटनाओं के कारण अपने शरीर को हिला नहीं पाते। उनके लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक आशा की नई किरण उभर कर आया है। वैज्ञानिकों ने ऐसे लोगों को केवल सोच के माध्यम से कंप्यूटर चलाने और संवाद करने में सफल बनाया है। कई मरीज अब स्क्रीन पर शब्द टाइप कर पा रहे हैं और रोबोटिक हाथ से चीजें पकड़ पा रहे हैं और व्हीलचेयर को नियंत्रित कर पा रहे हैं। कल्पना कीजिए, जो इंसान वर्षों तक किसी से बात नहीं कर पाता था, अब वो अपने विचार व्यक्त कर पा रहा है। ये विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। BCI का उपयोग जो है वो कृत्रिम अंगों यानी कि प्रोस्थेटिक्स में भी किया जा रहा है। पहले कृत्रिम हाथ या पैर केवल सीमित तरीके से काम करते थे, लेकिन अब दिमाग से नियंत्रित रोबोटिक अंग बनाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने खोए हुए हाथ की जगह रोबोटिक हाथ लगाता है तो ये केवल सोचकर उसे चला सकता है। इससे दिव्यांग लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और वो अधिक आत्मनिर्भर बन सकते हैं और सामान्य जीवन जो है वो जीने के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब BCI केवल जो है वो चिकित्सा तक ही सीमित नहीं रहा है, गेमिंग और मनोरंजन की दुनिया भी इसमें दिलचस्पी ले रही है। कई कंपनियां ऐसे वीडियो गेम विकसित कर रही है जिन्हें खिलाड़ी केवल अपने दिमागी संकेतों से नियंत्रित कर सकता है। सोचिए, बिना किसी कंट्रोलर के केवल दिमाग की मदद से गेम खेलना, ये अनुभव कितना अद्भुत होगा। भविष्य में शायद हम टीवी चैनल बदलने, मोबाइल चलाने या स्मार्ट होम डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए भी अपनी केवल सोच का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में BCI की नई संभावनाओं के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति को समझ रहे हैं जो विद्यार्थियों की एकाग्रता और मानसिक जो स्थिति है उसको भली भांति समझ सके। अगर किसी छात्र का ध्यान भटक रहा है तो सिस्टम उसे पहचान सकता है और सीखने की जो प्रोसेस है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकता है। हालांकि ये अभी शुरुआती स्तर पर है, लेकिन भविष्य में ये शिक्षा को पूरी तरह बदल सकता है। और बहुत सारी ऐसी दुनिया में कंपनीज़ है जो इस तकनीक पर काम कर रही है। और दावा किया जा रहा है कि ये जो भविष्य में मानव बुद्धि है उसको और ज़्यादा एकाग्र रूप से बढ़ावा देगी। और ये जो तकनीक है वो अभी रिसर्च और परीक्षण के दौर में है, लेकिन इसने पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो अपनी ओर खींचा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि ऐसे वर्ल्ड में चल रही है, हमारे भविष्य में शायद ऐसे कंप्यूटर से जुड़ी हुई, AI से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन उसमें नई तकनीक के साथ साथ चुनौतियां जो है वो भी आती है। बहुत सारे ऐसे हमारी प्राइवेसी से जुड़े हुए या फिर जो तकनीक है उससे जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे नैतिक पहलू से जुड़े हुए खतरे जो हैं वो भी हमें महसूस करने को देखने को मिल रहे हैं। उसमें BCI के साथ साथ क्या क्या चुनौतियां या जो सवाल है तकनीक से जुड़े हुए वो खड़े हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। बने रहिए 100.7 FM पर।

जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का खास सेगमेंट रहता है विज्ञान धारा, जिसमें हम बात कर रहे थे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में, किस तरीके से ये चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और क्रांति ला रहा है और आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो हमको होने वाला है। लेकिन हर एक नई तकनीक के साथ कुछ चुनौतियाँ और सवाल भी आते हैं और BCI के साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्राइवेसी यानी कि जो हमारी निजता है उसका क्या होगा। यदि जो मशीन है वो हमारे दिमागी संकेत पढ़ सकती है तो क्या हमारे विचार पूरी तरीके से सुरक्षित रह पाएंगे? क्या भविष्य में कोई हमारी सोच को हैक कर सकता है? क्या हमारे निजी विचार भी डेटा बन जाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर वैज्ञानिक, कानून विशेषज्ञ और समाज शास्त्री जो है वो गंभीर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सोचने वाली बात है कि हम नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में जो तकनीकें हैं वो और भी ज़्यादा डेवलप होंगी, तो काफ़ी सारी चुनौतियां जो है वो हमारी प्राइवेसी को लेकर भी आएंगी। तो इस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमें खुद अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए, अपनी निजता का ध्यान रखते हुए इन सारी तकनीक का सावधानीपूर्वक जो इस्तेमाल है वो करना आना चाहिए। एक और चिंता का विषय ये भी है कि कहीं ये तकनीक केवल जो अमीर तबके हैं उन लोगों तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है, BCI अगर बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो समाज में असमानता और बढ़ सकती है। कुछ लोग तकनीक के ज़रिए अपनी क्षमताएं बढ़ा पाएंगे जबकि बाकी लोग जो है वो पीछे रह सकते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि विज्ञान का जो विकास है वो मानवता के हित में हो और सभी लोगों को समान रूप से पहुँचे, क्योंकि जब तकनीक बढ़ती है तो उसका जो उपयोग लेने का तरीका है, या फिर यूं कहें कि जो उसकी क्षमताएं हैं वो समान रूप से विकसित की जाए। साथ ही अगर हम इसके नैतिक पहलू के बारे में बात करें तो भविष्य में इंसान अपने दिमाग को मशीनों से जोड़ने लगे तो क्या इंसान और मशीन के बीच की जो सीमा है वो बदल जाएगी? ये जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानव मस्तिष्क है उसका मेल जो है वो नई चुनौतियाँ पैदा करेगा। ये सवाल केवल विज्ञान के नहीं बल्कि दर्शन और समाज के भी है। इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि तकनीक के साथ साथ जो नैतिक मूल्य हैं और कानून है उनको भी मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब भी जो मशीन है, भविष्य में जो इंसान है, इनका आपस के अंदर जोड़ होगा, जो सीमाएं हैं वो बदल दी जाएंगी, क्योंकि मानव मस्तिष्क और कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, AI जो है, वो साथ मिलकर ऐसे तकनीक को मजबूती प्रदान करेंगी, लेकिन साथ में नैतिक मूल्यों और जो कानून है उनको भी बनाए रखना उतना भी ज़रूरी होता है। अब ज़रा कल्पना कीजिए कि भविष्य की दुनिया की, कि शायद आने वाले वर्षों में लोग बिना बोले संवाद कर सकेंगे, केवल सोचकर मैसेज भेज सकेंगे, डॉक्टर जो है वो दूर बैठकर रोबोटिक सर्जरी कर सकेंगे, दिव्यांग लोग सामान्य जीवन जी सकेंगे और जो सैनिक है वो युद्ध क्षेत्र में तेजी से निर्णय ले सकेंगे। यहाँ तक कि इंसान की जो याददाश्त है उसको बढ़ाने के प्रयोग भी संभव हो सकते हैं। ये सब सुनने में किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन विज्ञान तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत जो है वो भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। भारतीय वैज्ञानिक ऐसी तकनीक विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो सस्ती, सुरक्षित और आम लोगों के लिए उपयोगी हो। अगर भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो ये स्वास्थ्य और तकनीक के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। दोस्तों, विज्ञान का जो असली उद्देश्य है वो मानव जीवन को बेहतर बनाना है। BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक हमें ये सिखाती है कि इंसान की जो कल्पना शक्ति है वो कितनी अद्भुत है। कभी जो बातें केवल फिल्मों में दिखाई देती थी वो आज प्रयोगशालाओं में हकीकत बन रही है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि हम तकनीक का उपयोग जो है वो अपनी जिम्मेदारी और समझदारी से करें। आज के युवा इस तकनीक के सबसे बड़े भागीदार बन सकते हैं। अगर आप विज्ञान, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स या न्यूरोसाइंस में रुचि रखते हैं तो BCI के लिए भविष्य का एक बड़ा अवसर हो सकता है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में रिसर्च, इंजीनियर, डेटा साइंस और मेडिकल टेक्नोलॉजी की बहुत मांग बढ़ने वाली है, इसलिए युवाओं को नई तकनीकों को समझना और सीखना बिल्कुल चाहिए।
ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस केवल एक मशीन नहीं दोस्तों, बल्कि मानव सोच और तकनीक के बीच बनने वाला एक नया पुल है। ये तकनीक दिव्यांग लोगों के लिए उम्मीद बन सकती है, शिक्षा और चिकित्सा को बदल सकती है और इंसान की क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। लेकिन इसके साथ हमारी जिम्मेदारी, नैतिकता और सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। बहुत सारी हमने बातें की कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI जो है वो किस तरीके से अलग अलग फील्ड में काम कर सकता है, युवाओं की क्या भागीदारी रह सकती है, इसकी क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बहुत सारी बातें की। विज्ञान धारा सेगमेंट में यूं ही बने रहिए, मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन। बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
5: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट
6: एक्सप्रेस के यात्री तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
7: दिमाग चार्ज कर अपना।
8: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
7: देखा?

0: व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे। तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का खास सेगमेंट रहता है विज्ञान धारा, जिसमें हम विज्ञान से जुड़ी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें ऐसे गैजेट की जो विज्ञान से तो जुड़ा हुआ है ही, साथ ही साथ हमारी हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है, जिसने दुनिया भर में लोगों की फिटनेस की आदतें बदल दी है। जी हाँ, अगर हम बात करें फिटनेस ट्रैकर के बारे में कि ये कैसे काम करता है, कितना उपयोगी है, तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई फिट रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है। कोई रोजाना चलने की आदत बनाना चाहता है, तो कोई अपने दिल की धड़कनों पर नजर रखना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी जो बॉडी है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। यही पर काम आता है फिटनेस ट्रैकर। जी हाँ दोस्तों, हमने कई लोगों के हाथ में स्मार्ट बैंड या स्मार्ट वॉच देखी होगी। कोई चलते चलते अपने कदम गिन रहा होता है, तो कोई हार्ट रेट चेक कर रहा होता है। यही जो डिवाइस है छोटी सी, वो कहलाती है फिटनेस ट्रैकर। जी हाँ दोस्तों, फिटनेस ट्रैकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसे आमतौर पर हाथ में पहना जाता है। इसका काम हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है उस पर नजर रखना होता है, जैसे हम कितने कदम चले हैं, कितनी कैलोरी बर्न की है, कितनी देर सोए हैं, दिल की धड़कन कैसी रही और शरीर कितना एक्टिव रहा। यानी कि ये एक तरह का डिजिटल हेल्थ असिस्टेंट है जो हर समय आपके शरीर की जो भी गतिविधियां है उसको रिकॉर्ड करता है। अब सवाल आता है कि ये काम कैसे करता है। दोस्तों, फिटनेस ट्रैकर में कई छोटे छोटे सेंसर लगे होते हैं। यही सेंसर शरीर की गतिविधियों को समझते हैं। जैसे कि जब आप दौड़ते हैं, चलते हैं, तो ट्रैकर के अंदर लगा जो सेंसर है वो आपकी मूवमेंट को महसूस करता है और कदम गिनता है। इस तरह एक सेंसर जो है वो हार्ट रेट को भी मापता है। हार्ट रेट मापने के लिए इसमें छोटी सी हरी लाइट लगी होती है। ये लाइट त्वचा पर पड़ती है और खून के बहाव को महसूस करके दिल की धड़कनों का अनुमान लगाती है। कई एडवांस जो फिटनेस ट्रैकर है उनके पास आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल तक को माप लेने की क्षमता होती है, यानी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है ये भी बता देते हैं। कुछ ट्रैकर आपकी नींद को भी मॉनिटर करते हैं और वे बताते हैं कि आप कितनी देर गहरी नींद में रहे और कितनी देर हल्की नींद में। अब सोचिए, एक छोटा सा डिवाइस आपके शरीर के बारे में कितनी सारी जानकारी दे सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जानकारी देना ही इसकी खासियत नहीं है, बल्कि असली ताकत है आपको प्रेरित करना। मान लीजिए आपने तय किया है कि रोज 10,000 कदम चलना है। अब फिटनेस ट्रैकर हर समय आपको दिखाएगा कि आपने कितने कदम पूरे किए हैं। जैसे जैसे संख्या बढ़ती है, एक मोटिवेशन जो है, मन में उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। और कई लोग कहते भी हैं कि फिटनेस ट्रैकर पहनने के बाद वे पहले से ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें हर समय अपनी प्रोग्रेस दिखाई देती रहती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन ऑफिस में बैठा रहता है तो ट्रैकर उसे अलर्ट भेज देता है कि अब थोड़ा चलिए। यानी ये सिर्फ डेटा नहीं दिखाता, बल्कि आपको हेल्दी रहने के लिए आप इसकी याद भी दिलाता है। दोस्तों, आजकल तनाव और जो अनियमित जीवन शैली है उसके कारण दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में फिटनेस ट्रैकर काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर किसी इंसान की हार्ट रेट अचानक बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाए तो कई स्मार्ट वॉच तुरंत चेतावनी भी दे देती है, तो इससे समय रहते हम डॉक्टर से संपर्क भी कर सकते हैं। हालांकि ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, लेकिन शुरुआती जो संकेत है वो ज़रूर दे सकता है। अब अगर हम बात करें युवाओं की, तो आज की युवा पीढ़ी मोबाइल और स्क्रीन में ज़्यादा समय बिताती है, खेल कूद और शारीरिक गतिविधियाँ कम होती जा रही है। ऐसे में फिटनेस ट्रैकर युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरूक बना सकता है। कई मोबाइल ऐप्स भी है जो फिटनेस चैलेंज देते हैं, जैसे रोज़ाना

5 किलोमीटर चलना या लगातार 7 दिन तक एक्सरसाइज करना। लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर प्रतियोगिता भी करते हैं, इससे फिटनेस जो है वो और भी मज़ेदार बन जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या फिटनेस ट्रैकर हर किसी के लिए ज़रूरी है? देखिए, ज़रूरी तो नहीं, बल्कि हम इसको उपयोगी ज़रूर कह सकते हैं, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहते हैं। अगर आप सुबह की सैर करते हैं, जिम जाते हैं, योग करते हैं, या तो फिटनेस ट्रैकर है आपकी प्रोग्रेस समझने में मदद कर सकता है। ये आपको बताता है कि आपकी मेहनत का असर कितना हो रहा है। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ के फायदे होते हैं तो कुछ सीमाएं भी होती हैं, और इसके साथ साथ जो फिटनेस डेटा है उसको अगर हम कंटिन्यूसली देखते रहते हैं तो उससे ज़्यादा चिंतित भी हो जाते हैं। हर समय हार्ट रेट देखना या कैलोरी गिनना जो है वो कभी कभी तनाव भी बढ़ा सकता है। इसलिए फिटनेस ट्रैकर को सिर्फ एक सहायक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं मानना चाहिए। क्यों, और बात करें भविष्य की, तो आने वाले समय में फिटनेस ट्रैकर और भी स्मार्ट होने वाले हैं। वैज्ञानिक ऐसे डिवाइस बना रहे हैं जो शरीर के तनाव, पानी की कमी और यहाँ तक कि बीमारी के शुरुआती संकेत भी पहचान सके। तो दोस्तों, तकनीक तभी अच्छी होती है जब इंसान की ज़िंदगी आसान बनाए। फिटनेस ट्रैकर भी ऐसी ही तकनीक है, और ये हमें हमारी सेहत के प्रति हर पल जागरूक रहने के लिए संकेत भी देती है। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, फिलहाल ये चलते हैं एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का खास सेगमेंट रहता है विज्ञान धारा, जिसमें हम तकनीक से जुड़ी, विज्ञान से जुड़ी हुई बातें करते हैं। और अगर बात करें, हम इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो हर साल गर्मियों में लोगों के जीवन को सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रभावित करती है वो होती है हीट वेव। दोस्तों, हीट वेव का विज्ञान जो है वो क्या होता है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों ये इतना खतरनाक बन जाता है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो हीट वेव यानी कि लू, जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है और लगातार कई दिनों तक बना रहता है, तब उसे हीट वेव कहा जाता है। भारत में मौसम विभाग के अनुसार अगर किसी इलाके का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाए और सामान्य तापमान से लगभग 4 से 6 डिग्री ज़्यादा हो, तो उसे हीट वेव माना जाता है। और इस हीट वेव के कारण जो इंसान है, जानवर है और पर्यावरण है, उस पर गंभीर असर देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है कि आखिर तापमान इतना बढ़ता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है सूर्य की गर्मी। गर्मियों में पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूर्य की सीधी किरणों के संपर्क में आता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है, वातावरण में बदलाव, हवा की दिशा, नमी की कमी और जलवायु परिवर्तन भी हीट वेव को बढ़ावा देते हैं। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक बादल नहीं आते और बारिश नहीं होती, तब जमीन सूखने लगती है। सूखी जमीन तेजी से गर्म होती है और आसपास की हवा का जो तापमान है वो बढ़ा देती है। हीट वेव का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण ग्लोबल वार्मिंग को भी कहा जाता है। पिछले कई दशकों से पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ये गैसें वातावरण में गर्मी को फंसा लेती है, जिससे धरती जो है वो धीरे धीरे और गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में हीट वेव पहले से और ज़्यादा खतरनाक और लंबी हो सकती है। दोस्तों, हीट वेव सिर्फ गर्मी बढ़ाने तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि ये हमारे शरीर पर भी गहरा असर डालती है। हमारा शरीर सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए पसीना निकालता है। जब पसीना सूखता है तब शरीर ठंडा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी में शरीर की ये जो प्रणाली है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाती है। इससे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और व्यक्ति को चक्कर आना, कमजोरी, सिर दर्द और उल्टी जैसी समस्याएं होने लगती है। गंभीर स्थिति में हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि शहरों की हीट वेव ज्यादा खतरनाक क्यों होती है। आपने देखा होगा कि गांवों की तुलना में शहर बहुत ज्यादा गर्म महसूस होते हैं। इसका कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। शहरों में कंक्रीट की इमारतें, सड़कें और वाहन दिन भर गर्मी को सोखते रहते हैं और रात में धीरे धीरे छोड़ते हैं। पेड़ों की कमी और प्रदूषण भी तापमान जो है वो बढ़ा देते हैं, और यही वजह है कि बड़े शहरों में रात के समय भी गर्मी कम नहीं होती है। और हीट वेव का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं दोस्तों, बल्कि खेती और पशुओं पर भी पड़ता है। ज़्यादा गर्मी से फसलें सूखने लगती है, पानी की कमी बढ़ जाती है और बिजली की मांग जो है वो अचानक बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार बिजली कटौती की समस्या भी बढ़ जाती है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इसी तरीके से हीटवेव के खतरे को कम नहीं किया गया तो पर्यावरण की रक्षा जो है वो मुश्किल हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने होंगे, प्रदूषण कम करना होगा और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना होगा। पेड़ वातावरण को ठंडा रखने में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो न सिर्फ छाया देते हैं बल्कि हवा में नमी बनाए रखने में भी मदद करते हैं। दोस्तों, हीट वेव एक प्राकृतिक घटना ज़रूर है, लेकिन इंसानी गतिविधियों ने इसे और ज़्यादा गंभीर बना दिया है। अगर हम आज से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी समझते हैं तो आने वाली पीढ़ियों में भी इससे ज्यादा जो गर्मी का एहसास है वो नहीं होगा। जैसे हम पानी बचा सकते हैं, पेड़ लगाना, बिजली की बचत करना और प्रदूषण कम करना। दोस्तों, विज्ञान हमें सिर्फ समस्याओं के बारे में नहीं बताता, बल्कि उनसे बचने का रास्ता भी दिखाता है। हीट वेव का विज्ञान समझकर हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। गर्मियों में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। खूब पानी पिए, धूप से बचे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। और भी बहुत सारी हमने विज्ञान सेगमेंट में बातें करी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में, फिटनेस ट्रैकर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा कार्यक्रम। फिलहाल प्रोग्राम से जाने की इजाजत दीजिए, आपकी दोस्त शालिनी को नमस्कार।

युवा श्रोता भी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हो चुके हैं। लीजिए पेशे खिदमत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आप जानेंगे हमारे इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। अंग्रेजी समाचार होंगे शाम 6:05 पर। देशभक्ति फिल्मी गीत श्रोता सुन सकेंगे FM 4 से शाम 6:10 पर। शाम 6:20 पर सुनिएगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले संस्कृत में समाचार। हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र जयपुर से शाम 6:30 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा शाम 6:40 पर और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी, समय रहेगा शाम 7 बजे का। रात्रि 8 बजे सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। समाचार संध्या और न्यूज 8:09 रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रात्रि 8:45 पर और रात्रि 9 बजे। राजस्थानी लोक संगीत श्रोता सुन सकते हैं FM 4 से रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम चर्चा का विषय है आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे सुनेगा शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का प्रसारण होगा रात्रि 10:30 पर। रात्रि 11 बजे सुनेगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर।

श्रोता भी सुन रही थी कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आपने जाना हमारे इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। श्रोता सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. He said, for the kharif season, the estimated payout to the farmers will be 2,60,000 crore rupees.
1: किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया.
3: टुडे अ मेजर डिसीजन वाज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप. द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर. विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 करोड़ रुपीज. द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन.
1: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन.
2: Mr. Vaishnav added that the MSP amount paid to 14 kharif crop growing farmers during the period 2014-15 to 2025-26 was 18.99 lakh crore rupees against the payment of 4.75 lakh crore rupees during the period 2004-5 to 2013-14. The Union Cabinet has approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. Mr. Vaishnav said the scheme will generate revenue of 6,300 crore rupees per year only from mining and will also support Atmanirbhar Bharat and Make in India initiative amid current geopolitical situation. Air India has decided to reduce international flights, temporarily suspending services on some overseas routes. The decision has been taken in the wake of airspace curbs and high jet fuel prices. Air India said rationalization of international services will be in place for June to August this year. Air India to temporarily suspend services to on Delhi-Chicago, Mumbai-New York, Delhi-Shanghai and Chennai-Singapore and two other routes. The Assam government will introduce the Uniform Civil Code UCC bill in the State Legislative Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Hemanta Biswa Sarma made the announcement while addressing the media after chairing the first cabinet meeting of the new term. Dr. Sarma took oath as the Assam Chief Minister for his second consecutive term yesterday. The government of West Bengal has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains, animal products and other essential products. Earlier restrictions were placed by the erstwhile TMC government. It is learnt huge losses were incurred by the potato farmers and other entities by this restriction. Before coming to power, the BJP had assured the farmers for the lifting of the restriction. On the other hand, West Bengal decided to hand over the cases related to the teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the Central Bureau of Investigation. Gold and silver prices today witnessed a sharp surge of up to 6%. In the futures market at the multi-commodity exchange, gold for the June contract was trading nearly 6% higher at 1,62,597 rupees per 10 grams, while silver for the July contract was trading around 6.4% higher at 2,96,821 rupees per kilogram, according to latest reports. The government has raised the import duty, including cess, on gold and silver from 6% to 15%. Prime Minister Narendra Modi has significantly reduced the size of his convoy during recent domestic visits while retaining all essential security arrangements mandated under the Special Protection Group SPG protocols. According to sources, the reduction in the number of vehicles in the Prime Minister's convoy was implemented during his recent visits to Gujarat and Assam. Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to the United Arab Emirates, UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy on Friday. Briefing media in New Delhi this evening, Secretary West of the Ministry of External Affairs, Sibi George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation. And with that, we end this news bulletin.
4: FM 102.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति फिल्मी गीत।

महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज के साथ ही आज का देशभक्ति फिल्मी गीतों का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले संस्कृत में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। पश्चिम एशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकटकालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आवाहनस्य अनन्तरं केन्द्र राज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन चतुर्दश खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। सूर्यपुष्पस्य बीजस्य सर्वाधिक वृद्धिः, तदनन्तरं कर्पासतिलयोः च। तमिलनाडु राज्यस्य जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे टीवीके सर्वकारेण राज्य विधानसभायां सहज बहुमतेन शक्ति परीक्षणं विजितम्। एन रंगासामी पंचमं वारं पुडुचेरी राज्यस्य कार्यकालाय मुख्यमंत्री रूपेण शपथं स्वीकृतवान्। अपि च सीबीएसई द्वारा अखिल भारतीय वरिष्ठ माध्यमिक वर्गस्य द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामाः घोषिताः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेष रक्षा समूहस्य एसपीजी प्रोटोकॉल इत्यस्यान्तर्गतं सर्वाः आवश्यकाः सुरक्षा व्यवस्थाः अवलम्ब्य सद्यः एव आंतरिक यात्रासु स्वस्य यात्रा वाहनानां संख्या न्यूनीकृतवान्। सूत्रानुसारं प्रधानमन्त्रिणः यात्रा वाहनानां संख्यायां न्यूनीकरणं तस्य सद्यः गुजरातस्य, असम राज्यस्य च भ्रमणकाले कार्यान्वितम्। आर्थिक स्थिरतायै योगदानाय नागरिकान् प्रति प्रधानमन्त्रिणः सप्ताग्रहाणाम् अनुरूपम् एतदभवत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आग्रहानन्तरं केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहेन उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, दिल्ल्याः च मुख्यमन्त्रिभिः, विधायकैः, जनप्रतिनिधिभिः च आधिकारिकयानानां संख्या 50% यावत् न्यूनीकर्तुम् आदेशः प्रदत्तः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरे संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली देशानां षड् दिवसीय यात्रां करिष्यति। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां प्रसार माध्यमान् संबोधयन् विदेश मंत्रालयस्य सचिवः सीबी जॉर्जः संसूचितवान् यत् पंच देशानां यात्रायाः प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्त अरब अमीरात देशं प्राप्स्यति, यत्र हि सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। सः अवदत् यत् उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक विषयेषु, विशेषतः ऊर्जा सहकारे, अपि च परस्पर हित सम्बद्धेषु क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विचार विनिमयं करिष्यतः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य 98-90 शततमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने भारते कृत परमाणु परीक्षणस्य स्मरणं कृतम्। सामाजिक माध्यमेषु एकं संस्कृत सुभाषितं विनिमयी कुर्वन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एतत् परमाणु परीक्षणं देशस्य अविचल संकल्पं प्रदर्शयति। श्रीमोदी अवदत् यत् अस्य परीक्षणस्य अनन्तरं सम्पूर्णेन विश्वेन भारतं सम्पीडितम्, परञ्च देशेन सिद्धीकृतं यत् कापि शक्तिः भारतम् अवरोद्धुं न शक्नोति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विपणन सत्रस्य 27-27 वर्षयोः कृते चतुर्दश खरीफ इति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्ये वृद्धिं स्वीकृतम्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य सभायाः अनन्तरं प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् सर्वकारेण ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धितम् अस्ति, येन उत्पादकेभ्यः तेषाम् उत्पादानां कृते लाभप्रदं मूल्यं सुनिश्चितं भविष्यति। सः अवदत् यत् ग्रैष्मिककालस्य कृते कृषकाणां कृते प्रायः 60-2 लक्ष कोटि रूप्यकाणि प्रदीयन्ते। सः अवदत् यत् अस्मिन् ऋतौ 24-800,000 मैट्रिक टन इत्यतोप्यधिकानि सस्यानि प्राप्तानि भविष्यन्ति। श्री वैष्णवः अवदत् यत् एमएसपी मध्ये सर्वाधिकं 22,600 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल वृद्धि सूर्यमुखी बीजानां कृते अनुशंसितम्। तदनन्तरं 57,500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल कर्पासस्य कृते, 500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल तिलस्य कृते च अनुशंसितमस्ति।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भू अंगारस्य तथा लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजनायाः प्रोत्साहनाय 37.5 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय व्ययस्य योजना अनुमोदिता। प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना भारतस्य अंगारस्य लिग्नाइट गैसिफिकेशन इत्यस्य च कार्यक्रमं गतिप्रदानाय प्रमुखं पदाक्षेपमस्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् योजनायाः अन्तर्गतं 3,00,000 कोटि रूप्यकाणाम् अपेक्षित निवेशः भविष्यति।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलगा वेट्रिकझगम दलस्य सर्वकारेण तमिलनाडु विधानसभायां बहुमत परीक्षणं विजितम्। चतुश्चत्वारिंशोत्तरैकशत विधायकाः पक्षे मतदानं कृत्वा सभायां स्पष्टं बहुमतं प्रदर्शितवन्तः। अत्रांतरे 22 विधायकाः विश्वासप्रस्तावस्य विरुद्धं मतदानं कृतवन्तः। कार्याचरणावधौ प्रमुखः विपक्षिदलं DMK विधानसभा सदनात् बहिरागच्छत्। सद्यैव समाप्तेः विधानसभा निर्वाचने तस्य दलेन केवलं 88 शतासनानि प्राप्तानि आसन्। तमिलनाडोः राज्यपालेन राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरवर्येण विजयाय सदने बहुमतं साधयितुम् आज्ञापितमासीत्। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दलस्य नेता एन रंगासामी अद्य पुदुचेरी राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण पंचमं वारं शपथ ग्रहणं कृतवान्। लोकनिवासे आयोजिते समारोहे पुदुचेरी नगरस्य उपराज्यपालः के कैलासनाथन वर्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कारितवान्। दलस्य मल्लादी कृष्णरावः भाजपेति दलस्य एन नमशिवायं च अस्मिन् समारोहे मंत्री रूपेण शपथं स्वीकृतवन्तः। भारत ऋतु विभागेन अद्य राजस्थान राज्ये उष्णतरंगस्य कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतनायाः सूचना प्रसारिता। गुजरात राज्ये महाराष्ट्रे पश्चिम मध्य प्रदेशे च श्वः यावत् उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुम् अर्हति। अपि च अद्य हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्डे च ओलावृष्ट्या सह वर्षायाः संभावना विद्यते। अद्य दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश झारखंड पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु विद्युत सहित वृष्टि तीव्र वायु वेगः च भविष्यति इति भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामाः प्रसारिताः। छात्राः आधिकारिक वेबसाइट डिजिलॉकर इत्यत्र उमंग ऐप इत्यत्र च स्वानुक्रमान् प्रविश्य परिणामं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः फरवरी मासस्य 17 दिनांकतः अप्रैल मासस्य 10 दिनांकपर्यन्तं लक्षोपलक्ष छात्राणां कृते परीक्षा आयोजिता। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिम एशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकट कालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना आवाहनस्य अनन्तरं केन्द्र राज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 14 खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं

0: नमस्कार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए यह निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इस खरीफ सीजन के लिए किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सबसे अधिक 622 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सूरजमुखी के बीजों के लिए की गई है। इसके अलावा कपास के दाम 557 रुपए और तिल के 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं। नई दरों के अनुसार ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपए, हाइब्रिड ज्वार का 4,023 रुपए और बाजरा का 2,900 रुपए प्रति क्विंटल होगा। अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय की गई है। इस सीजन में सरकार द्वारा 824 लाख मीट्रिक टन से अधिक फसल की खरीद का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की लागत से कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। देश भर में कुल 85.20% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणामों में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। छात्राओं का नतीजा 88.86% रहा, जबकि छात्रों का परिणाम लगभग 82% रहा। बोर्ड के अनुसार विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की इन परीक्षाओं में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 15,07,000 से अधिक बच्चे सफल रहे हैं। वहीं अजमेर रीजन का कुल परीक्षा परिणाम 86.78% रहा। यहां 88,000 से अधिक विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, जिसमें से 76,469 विद्यार्थी सफल हुए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वास जताया है कि कृषि शिक्षा के जरिए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। वे आज कोटा में कृषि विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री बागड़े ने कहा कि किसानों को उन्नत बीज और नई तकनीक से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने युवाओं से स्वरोजगार अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में ड्रोन, एआई और स्टार्टअप जैसे नवाचारों को अपनाने को कहा। दीक्षांत समारोह में 358 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 14 को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की नई प्रयोगशालाओं और अकादमिक भवनों का लोकार्पण भी किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कई आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। नए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन आगामी 28 जून को किया जाएगा। वहीं लिपिक ग्रेड द्वितीय और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई को होगी। बोर्ड ने पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 की तारीख में आवश्यक कारणों से बदलाव किया है। अब ये परीक्षा 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पिछले कैलेंडर में दी गई अन्य परीक्षाओं की तारीखें यथावत रहेंगी। राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़ा और रिकॉर्ड में हेरफेर करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों में मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग का कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच में सामने आया है कि राजेश ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा पास कर नियुक्ति प्राप्त की थी। बाद में उसने आयोग के रिकॉर्ड में फोटो बदलने के लिए मान सिंह से 8 लाख रुपए में सौदा किया। एसओजी ने राजेश को इसी महीने की 18 तारीख तक पुलिस रिमांड पर लिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि यमुना जल समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ महत्वपूर्ण सहमति बनी है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद श्री शर्मा ने मीडिया को बताया कि यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।
2: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत हुई है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था, उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक, दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि किशाऊ बांध परियोजना के काम में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बांध के बनने से हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा। राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत 5 जिलों के लिए 18 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें दौसा, चूरू, डीडवाना, कुचामन, फलोदी और बालोतरा के जिला उत्पाद शामिल हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई बैठक में परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 10,76,00,000 रुपए जारी किए गए। इस राशि से दौसा और डीडवाना कुचामन में पत्थर उद्योग, चूरू में लकड़ी उत्पाद, फलोदी में सोना मुखी भंडारण और बालोतरा में टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग के लिए आधुनिक केंद्र और लैब बनाई जाएंगी। इससे स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधारकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। मुख्य सचिव ने आज ही स्वायत्त शासन विभाग और PHED के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अमृत 2.0 योजना के तहत प्रदेश के शहरों में संचालित सीवरेज और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर करने के निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तर, पश्चिमी और पूर्वी भागों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर जिले लू की चपेट में रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज फलोदी सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। जैसलमेर में दिन का तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं बाड़मेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। जिला मुख्यालयों सहित कस्बों में दोपहर के समय बाजार सूने नजर आए। राजधानी जयपुर में भी लू जैसे हालात रहे। कई स्थानों पर प्रशासन ने सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया। मौसम केंद्र जयपुर ने सीमावर्ती जिलों के लिए कल भी भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई

0: महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 7000 से अधिक लोगों के चालान किए गए। प्रदेश भर में इन दिनों डिजिटल जनगणना 2027 को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने स्वगणना कर लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। शहर में जगह जगह हमारी जनगणना हमारा अधिकार जैसे नारों वाले पोस्टर लगाकर लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं झुंझुनू में आज प्रगणकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। झुंझुनू जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में बड़ी संख्या में खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि पिछले साल जनवरी से इस वर्ष 2026 तक जिले में विशेष अभियान के तहत कुल 837 सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल्स में से 223 नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कल नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य समावेशी शासन को मजबूत करना, नीतिगत पहुंच बढ़ाना और पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम जारी किया। नतीजों में छात्राओं ने एक बार फिर बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, यमुना का पानी पाइपलाइन के जरिए राजस्थान लाने के लिए समय सीमा तय की गई और प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में प्रचंड गर्मी से जनजीवन प्रभावित। फलोदी और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ऊपर पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं लक्ष्मी चंद नागर। हाड़ौती अंचल का 12 जिला प्राचीन मंदिरों, शेरगढ़ किले और अन्य पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इस कृषि प्रधान क्षेत्र को वराह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों 12 जिला भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है। दिन का तापमान हाल ही में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं। वहीं अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। चिकित्सा संस्थानों में लू और तापघात के रोगियों के उपचार के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 15 दिन के ग्राम रथ अभियान के तहत जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ग्राम रथ अंता, अट्रू, छबड़ा और किशनगंज शाहबाद क्षेत्र के गांवों में इन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के बारे में भी ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को बताया जा रहा है। एलईडी मोबाइल वैन के जरिए ऑडियो वीडियो प्रस्तुति हो रही है। वहीं नुक्कड़ नाटक और संध्या चौपालों में भी लोगों की अच्छी भागीदारी रही है। अब तक अंता, मियाड़ा, अटरू, रिछंदा, किशनगंज और छबड़ा सहित विभिन्न पंचायतों में ग्राम रथ पहुंचने पर ग्रामीणों ने उत्साह के साथ स्वागत किया और विभिन्न जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी ली। जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने अंता की तुलसा पंचायत में ग्राम रथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में श्री देवासी ने बताया कि इस अभियान के तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आम लोगों की समस्याओं और सुझावों पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। इसके लिए ग्राम रथों में शिकायत और सुझाव पेटिका लगाई गई है। जिला प्रभारी मंत्री ने बामला ग्राम पंचायत पर रात्रि चौपाल में लोगों की समस्याएं सुनी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बाल मुकुंद असावा ने पिछले दिनों 12 जिले के कलेक्टर के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिले के विकास की प्राथमिकता बताई। श्री असावा ने सहरिया, बहुल, शाहबाद क्षेत्र का दौरा कर शैक्षणिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बास्तुनी के जनजातीय बालक छात्रावास का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने भीषण गर्मी के दौर को देखते हुए छात्रावास में पर्याप्त संख्या में कूलर और पंखे लगाने तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने छात्रावास परिसर की नियमित रूप से साफ सफाई करने को भी कहा। प्रमुख जनगणना अधिकारी और जिला कलेक्टर ने बीते दिनों स्वगण

0: कर जनगणना प्रक्रिया 2027 के पहले चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपना ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करने की अपील की। जिले में जनगणना कार्य को सुव्यवस्थित संपन्न कराने के लिए 2242 प्रगणक और 377 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। जिले में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से आमजन की सुविधा के लिए 5 से 7 मई तक पासपोर्ट सेवा शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय विदेश सेवा के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विपुल देव ने बताया कि पासपोर्ट सेवाओं को अधिक सुलभ, सरल और अनुकूल बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल के माध्यम से जिले में निवास करने वाले नागरिकों को अपने स्थानीय क्षेत्र में ही पासपोर्ट बनवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उनके समय और संसाधनों की बचत सुनिश्चित होगी। इसी क्रम में मोबाइल पासपोर्ट वैन के माध्यम से 3 दिवसीय पासपोर्ट शिविर का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन 40 पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अठरू 12 विधायक राधेश्याम बैरवा ने 4 मई से अपने विधानसभा क्षेत्र में आपका विधायक आपके द्वार जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया। करीब 1.5 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों और वार्ड स्तर पर लोगों की समस्या का त्वरित निस्तारण करना है। जिला कलेक्ट्रेट भवन पर पिछले दिनों हवाई हमला होने की आपात स्थिति की मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान हवाई हमले की सूचना से समूचा क्षेत्र सायरन की आवाजों से गूंज उठा। बचाव और सुरक्षा दलों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए। जिला कलेक्टर के साथ ही पुलिस अधीक्षक ने राहत और बचाव कार्य की कमान संभाली। साथ ही जिला मुख्यालय पर ब्लैक आउट कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों की लाइटों को बंद करवाया गया। विश्व विरासत दिवस के उपलक्ष में 12वीं संगोष्ठी का आयोजन हुआ। 12 जिले की विरासत और हमारे प्रयास विषय पर संगोष्ठी रखी गई। कार्यक्रम में कला संस्कृति विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप सिंह जादौन ने बताया कि जिले की ऐतिहासिक धरोहरें 12 की सांस्कृतिक पहचान है। इसके साथ ही 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 सारु 14 साखारा सरकारी मोल माए बढ़ोतरी री मंजूरी दीनी। CBSE 12वीं कक्षा रा इम्तिहान रो नतीजो जारी कीनो, लड़कियां बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करी ची। और प्रदेश रा आतुणी और लंकाऊ उगनी हल्का माए जबरदस्त गर्मी, फलौदी और जैसलमेर माए पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्रिमंडल विपणन सीजन 2026-27 सारू खरीफ री 14 साखा रा सरकारी मोल माए बढ़ोतरी री मंजूरी दे दीनी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली माए आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि मौजूदा खरीफ सीजन सारू किसाना ने करीब 2,60,000 करोड़ रुपये रो चुकारो करियो जावेला।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव बतायो कि सब 32,622 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी सूरजमुखी रा बीजा सारू करी ची है। ईसा गई कपास रा दाम माए 557 रुपया और तिल्ली रा मोल माए 500 रुपया प्रति क्विंटल री बढ़ोतरी करण रो फैसलो करी चियो। इन फैसला पाछे ग्रेड ए धान रो मोल 2,461 रुपया, हाइब्रिड ज्वार रो मोल 4,023 रुपया और बाजरा रो मोल 2,900 रुपया प्रति क्विंटल वैला। तुअर री दाल रो सरकारी मोल 8,450 रुपया प्रति क्विंटल तय करी चियो है। श्री वैष्णव बतायो कि इन सीजन माए सरकार का न्यू 824 लाख मीट्रिक टन 32 साखा री खरीदी रो अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल 37,500 करोड़ रुपया खर्चों कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनावां सारू खास योजना नई मंजूरी

0: रिदिनी
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 12वीं कक्षा री परीक्षा रा नतीजा रो आज ऐलान कर दिनो। ओ इम्तिहान देवनवाला मायो 85.20% पास फेक्या। इम्तिहान माय लड़कियां रो नतीजो 88.86%, जदके लड़का रो नतीजो 82.13% रह्यो। बोर्ड रे मुजब विज्ञान वाणिज्य और कला संकाय माय लीरीजी परीक्षा माय 17,68,000 विद्यार्थी शामिल फिया, जा मायों 15,07,000 पास फेक्या। अजमेर रीजन इम्तिहान देवन वाला मायों 86.78% पास फेक्या। अजमेर रीजन माए इम्तिहान देवन वाला 88,118 विद्यार्थियां मायों 76,469 पास फेक्या। हालांकि अजमेर रीजन माए लाडला साल री तुलना माए इन साल पास फेवन वाला रो प्रतिशत कम रह्यो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आवता दिना ली जावन वाली न्यारी न्यारी भर्ती परीक्षाओं रो नुवो कार्यक्रम जारी कीनो है। इन्हें मुजब वन पाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 28 जून न फैला, जदका सेकंड ग्रेड क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2025 5 जुलाई न लीचा वेला, पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा 2026 24 जुलाई न फैला। राज्य पुलिस रो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 माय फर्जीवाड़ो करण और रिकॉर्ड माय हेराफेरी करण रा आरोप माय 2 जना ने गिरफ्तार कीना है। पकड़ी गया आरोपिता माय राजेश कुमार और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर रो कर्मचारी मान सिंह शामिल है। जांच रे दौरान राजेश कानियों वानी ठौड़ दूजा ने बिठार परीक्षा पास कर और नौकरी हासिल करण री ठा पड़ी। इन पाछे वांका न्यू RPSC रा रिकॉर्ड माय फोटो बदली करण सारू मान सिंह 8,00,000 रुपया माय सौदो करण रिठा पड़ी। SOG आरोपित राजेश कुमार ने 18 मई ताई रिमांड माथे ले लीनो है। राज्यपाल और विश्वविद्यालय रा कुलाधिपति हरिभाव बागड़े कहो है कि खेतीबाड़ी में जुड़ी भणाई लिखाई रे जरिए देश माय खाद्य सुरक्षा ते करी जा सके है। वे आज कोटा माय कृषि विश्वविद्यालय रा 9वां दीक्षांत समारोह माय बोल रहा है। श्री बागड़े कहो कि किसाना ने उन्नत बीज और नुवी तकनीक उन जोड़ और खुदरेपान उबा करया जा सके है। राज्यपाल नौजवानों नौकरी करण वाला रे बजाय नौकरी देवन वाला बनबा सारू कहो। वह खेतीबाड़ी माय ड्रोन AI और स्टार्टअप काम लेवन सारू कहो। जलसा माय कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणाई नौजवानों तालीम ने किसाना और देश का भला सारू काम लेवन बाबत कहो। दीक्षांत समारोह माय 358 विद्यार्थियों ने डिग्रिया और 14 विद्यार्थियों ने सोना रा तमगा देर नवाजी चिया। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। यमुना नदी रा पानी जुड़िया करार रा बारा माय राजस्थान और हरियाणा सरकार बीच खास सहमति बनी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज नई दिल्ली माय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सागे मीटिंग पाछे आ जानकारी दीनी। श्री शर्मा कहो कि यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करती रीची है।
2: किसाऊ के पानी को लेकर के सहमति बनाने का सभी राज्यों में किस तरह से बन सकती है उसके लिए बातचीत हुई है। एक हरियाणा राजस्थान का यमुना का पानी उसकी पाइपलाइन उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि जल्दी से जल्दी वो कैसे हो उसके लिए समय तय हुआ है। एक हरियाणा और राजस्थान का RRTS का मामला था, उसमें सहमति बनी है कि वो हमारे राजस्थान तक दिल्ली हरियाणा और राजस्थान तक वो पहुंचे। इन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है।
0: मीटिंग पाछे हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतायो कि किसाऊ बांध बन जावण हरियाणा राजस्थान और दिल्ली माय पानी री समस्या हमेशा सारू खत्म भ जावेला। राज्य सरकार एक जिला एक उत्पाद नीति रा तहत पांच जिला सारू 18 करोड़ रुपए बत्ता खर्च वाली परियोजनावां मंजूर कीनी है।

0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री सदारत में राखीजी मीटिंग में दौसा चूरू डीडवाना कुचामन फलौदी और बालोतरा में आ कामा सारू 10,76,00,000 रुपया जारी करी चिया। इन तहत दौसा और डीडवाना कुचामन में भाटा उद्योग, चूरू में लकड़ी बुनिया सामान, फलौदी में सोना मुखी भंडारण और बालोतरा में टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग सारू नुआ सेंटर और लैब खोलिया जावेला। राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत बनावण और अपराधियां माथा काबू करण सारू पुलिस मुख्यालय रे ओरों 2 दिन रो नाकाबंदी अभियान चलाई चियो। अभियान रा तहत 727 ठोणा गाड़ियां री जांच करी ची। अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह बतायो के जांच रे दौरान 7,000 बत्ता चालान करी चिया। प्रदेश में डिजिटल जनगणना 2027 रे बारे में जागरूकता अभियान चलायो जा रियो है। भीलवाड़ा जिला में आई कलेक्टर, एसपी, सांसद और विधायक खुद डिजिटल जनगणना कीनी। शहर में न्यारी न्यारी ठोणा हमारी जनगणना हमारा अधिकार सरीखा नारा वाला पोस्टर लगार लोगों ने इनु जुड़बारी सीख दी जा रही है। झुंझुनू में आई आज प्रगणकान सारू खास शिविर लगाई चिया। अरे बे मौसम, प्रदेश रा उत्तराद आतुणी और उगनी हल्का में जोरदार गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग रे मुजब आज फलौदी सबू गर्म रहो, जठे पारो 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी चियो। जैसलमेर में दिन री बगत तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करी चियो। बाड़मेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर कियो। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर में लू रा हालात रहा। राजधानी जयपुर में आई लू सरीखा हालात बीच कई ठोणा प्रशासन सड़क माथे पानी रो छिड़काव करवायो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर पाकिस्तान नु लागोड़ी सरहद कने रा हल्का माए काले जबरदस्त लू बाजण सारू चेतायो है। इस आगे कई जिला सारू ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करी चियो है। इन बीच राज्य रा उत्तराद उगनी हल्का माए कठे कठे आज ही आंधी चाली और बिरखाफी। झुंझुनू जिला में मिलावटखोरी रे खिलाफ स्वास्थ्य विभाग री कार्रवाई रे दौरान मोटी तादाद में खान पीन री चीजा रा नमूना मानक रे मुजब नहीं मिलिया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर बतायो कि जनवरी 2025 हूँ मार्च 2026 ताई जिला में खास अभियान राते लिया जे 837 नमूना मायू 223 ते मानका माथे खरा नहीं उतरिया। सलूम्बर्रा पीएमसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक शांता अमृतलाल मीणा आज संविधान कक्ष और डिजिटल बाल पुस्तकालय जनता ने सौंपया। इस मौके विधायक विद्यार्थियों नुआ सुबिता रो फायदो लेवन बाबत कहो। वह डीएफएमटी मधु टीन शेट लगावन रा काम री शुरुआती कीनी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय सागे मिलर विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 सारू माई भारत प्लेटफॉर्म माथे राष्ट्रीय स्तर री सवाल जवाब री होड़ सरू कीनी है। प्रश्नोत्तरी होड़ आवता महीना फेवन वाला सीमावर्ती ग्राम सहभागिता कार्यक्रम माए नौजवाना रा चयन कार्यक्रम रो पहलो दौर है। ई ऑनलाइन होड़ माए 20 मई तई भाग लियो जा सके है। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स बीच मुकाबलो फैला। ओ मैच अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे रायपुर में शुरू फैला। अंक तालिका में फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स 8वीं ठौड़ माथे है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूजा पायदान माथे है। आखिर में खास समाचार एक कर फेर सुन ली रहो। केंद्रीय मंत्रिमंडल खरीफ विपणन सीजन 2026-27 सारू 14 शाखारा सरकारी मूल माए बढ़ोतरी री मंजूरी दीनी। सीबीएसई 12वीं कक्षा रा इम्तिहान रो नतीजो जारी कीनो, लड़कियां बाजी मारी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो यमुना नदी रो पानी पाइप लेन रे जरिए राजस्थान लावण री मियाद तय करी जी। और प्रदेश रा तुणी और लंका उगनी हल्का माए जबरदस्त गर्मी, फलौदी और जैसलमेर माए पारो 46 डिग्री सेल्सियस रे पार पुग्यो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: राजस्थान पब्लिक स्कूल विसाऊ।
1: नए सत्र में पहले 100 प्रवेश पर फीस में 25% की छूट।
0: कृषि विज्ञान कॉमर्स व कला सभी विषय उपलब्ध।
1: बेटियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति।
0: अनुभवी साफ सुरक्षित वाहन सुविधा और शानदार परिणाम।
1: हजारों छात्र आज सरकारी सेवाओं में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में।
0: राजस्थान पब्लिक स्कूल विसाऊ 9413360 97।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
3: घणो हेतर लाड लड़ावे अमृत बरसे मैन,
4: थारे अंचल री छाया में पाऊ सगड़ो चैन।
5: कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनना ले, सगले हेतालवा ने पंकज भाई का न्यू
4: और अयुब भाई का न्यू मोकला मोकला
5: राम राम।
4: पंकज भाई राम राम।
5: राम राम अयुब भाई।
4: पंकज भाई, अपने कार्यक्रम की शुरुआत हुई है लाड लड़ाने से। लाड लड़ावे जो देखो आंखिया में मायना जी का आंसू है, वह हप्पी आ जावे और जब आप माँ का आंचल के सारे जावा तो देखो वो आंचल है वो आपने आपके लुगड़ी से आपके पल्ले से वो आपने ढक लेवे। जी हाँ, गर्मिया के मौसम में अपने जिगा देखो छायादार जिगा पेड़ है, बे आपने देखो आपके आंचल के मायने ढक्की ठंडी छाया और ठंडी पून है वो आपने देवे।
5: भाई देखो के पेड़ की थे बात करिए ने आयु भाई, इस समय की तकड़ी जरूरत है। समझ गया ने, एक पेड़ जको है ने वो हर जीवन के लिए समर्पित है। सिर्फ मानसू जोड़ के मत देखो, धन पशु जोड़ के देखो, पशु पक्षी बाहु जोड़ के देखो, कितने जीवा ने तो शरणो दे और किता रागीर है, किता मानस है जकाने छाया दे है। इके सागे सागे पर्यावरण को जको संतुलन है, बिकमाइने जको पेड़ है भी की बहुत महती भूमिका है। आपने जकी प्राण वायु है
4: ऑक्सीजन
5: भी को एक बड़ो स्रोत पेड़ों में। इके सागे सागे बरसात जकी है, बस समय पर आनो बादल बनना आके मायने भी कठिन कठे अपना जगह पेड़ है बाकी भूमिका वे। इके अलावा जकी इमारती लकड़ी है आपनो बलितो है इंधन है वो भी अपन पेड़ पौधा मिले। तो देखो पेड़ जको है ने बिका बहुत मल्टीपल फायदा
4: और बे फायदा लेने के लिए देखो पंकज भाई आपा भी पीछे को नहीं, क्यों आपा ठहरे किसान और किसान जितो पेड़ को महत्व समझे वो महत्व समाज में अगर सगड़ा समझे लाग जावे तो आपा देखो बिरखा की उड़ीक करा। हाँ, टकटकी लगा की बा उड़ीक मिट जावे और उड़ीक जित मिट जावे तो बखत को ऊपर अपनी खेती है बा शुरू हो जावे और बखत पर खेती शुरू हो एडी पंकज भाई निश्चित रूप से किसान का हित में होवे।
5: भाई देखो थे बखत की जब बात करिए ने जे एक कहबत है, कोई भी काम समय पर होयडो होवे ने दुनिया में कठिनाई को नहीं होवे। और बात जे थे खेती की करो तो खेती में तो आके ने के बखत पर बैठा मोती नहीं बजे। तो कहबत है के बाको देलो रले धूल में जाको खेत पछेता में,
4: जाको देलो रुले खेत में,
5: बाको देलो रुले धूल में,
4: धूल में
5: जाको खेत पछेता में। और बीज बखत पर बाया निपजे हीरा बालू रेता में,
4: हीरा बालू रेता में। देखो पंकज भाई बात बात कमाई ने कितनी बड़ी बात है, तो आ बात अपने तालवा तक पहुंची यार। देखो जब मौसम की आप बात करा तो पंकज भाई जेठ को महीनो चाल देर क्या कर रहे, जेठा बेटा बाजरी बड़ बागी होई। कई अपना किसान भाई है अपन अभी जब गेले मारिया अपन मिलिया के भी में तो मारो खेत है जी लाडी बिरखा हुई बमी बीज और जी आज देखो बिरखा हुई है वह मारे बाजरी के लिए अमृत सम्मान हो ये। तो पंकज भाई बखत सारू आप सारा ही काम अगर आप कर ले तो मानस कदे ही है वो दुख
5: कौन पीछे कौन है पीछे कौन रहे पीछे कौन रहे
4: क्या करे ना कि बखत ने अगर आप पीछे छोड़ दियो तो निश्चित रूप से बखत है वो अपन बहुत गेरने ले जावे। तो बखत के सागर रहने से बखत अपन सागर है वो लेके चल लगो। और जैसे पेड़ा की बात चल रही है तो पंकज भाई कट्ठे कट्ठा अपन बहुत ज्यादा दर्द हो वे क्या आज आप अपने खेता की सीवा ने देखा ने तो सीव है वा सेंटीमीटर में आगी कितनी सेंटीमीटर में आगी के तारबंदी आपा करेला गया आपा अपने थोड़े से लालच के लिए सीव है वा आपा लगभग अपने खेता से जिकी समाप्त कर दी है। तो बार बार मापा अपने तालवा ने बताता भी रहा कि भाई खेत की सीव में बिन आपा ने मजबूत रखनी है। मजबूत रखने से आपा ने कई तरह का फायदा हुआ कि एक तो देखो उन न्याले के मायने जिकी अंधीर लूर चाले है तो बा अपने खेत की उपजाऊ माटी ने अपने खेत में ही रख लेवे।
5: भाई थारे कहने को मतलब वो है कि छाप कौन लगे और माटी जिके भी को कटाव को नहीं हो अगर सीव मजबूत हो तो वह कटे न कटे खेत जको है भी की ढाल बढ़ के खड़ी हो जाए।
4: बिल्कुल दूसरो फायदो कभी अपनी खड़ी फसल आपा चाहे अब देखो खरीफ को बखत आ रहे खरीफ की जब आपा बिजाई करेंगा पंकज भाई तो आवारा पशुओं से अपने खेत की है जिकी
5: रक्षा
4: रक्षा करे वो और रक्षा के सागे सागे अपनी जिकी फसल ने फायदो पहुंचाने आ रहा पक्षी है बे में आपको घोंसलों बनावेगा घोंसलों बनावेगा तो अपने खेत के बिजाई के बाद में जिका कीट पतंग लागे तो आपकी चोंच चुग लेगा। तीसरो फायदो का अपने खेत का मायने पुराने जमाने का मायने आप सिवा के ऊपर तोरू की बेल काकड़िए की बेल काचरे की बेल ए बेला है पे अपने सब्जी के रूप में है जिकी फल देवे
5: कोड़ा लगा देता
4: तो देखो पंकज भाई आप राय आपने अपने लालच के लिए अपने खेत की बंजन आपा बाढ़ बोला बिना आपा अपना हता ही हुआ जिकी खत्म कर ली। तो बखत रहता आज भी अपना किसान भाई ये बात न समझे तो अपने खेत को प्रहरी है बा शीव है अच्छा, सुरक्षित रखो।
5: अयू भाई देखो बात जब चाली पड़ी थी बतायो ना के तोरू लगावा या कोड़ा लगावा अब टाइम है इको
4: बिल्कुल टाइम
5: और आपा जहां गौर कौन करियो कदी अपनाई को नहीं चीज ने आपा अगर परवल बावा परवल बहुत होवा अपने एरिया में अपा कदे भाई को नहीं गौर कौन करियो ये चीज को
4: कदे ही कौन
5: करियो ने। अच्छा एक जोरदार चीज और है परवल ने बहुत ज्यादा पानी की जरूरत को नहीं
4: कम पानी की हाँ, फसल है
5: तो एक बीज आवे एक गुंदरी परवल आवे गुंदरी परवल ठीक है ने और बाकी जितना भी पेड़ पौधा ही मैं आकड़ो जकन आकड़ो जकन आक आपा बोला या आकड़ो कह दिया बिक की जड़ में नमी हमेशा रहेगी आकड़े की जड़ कदी थन सूखी को ला देगी बाकी पौधो जको है गो पेड़ हो गो वो पानी की मात्रा कम लाद सके थाने सूखेड़ो लाद सके आक जको है को ने बिक की जड़ में हमेशा नमी मिलेगी इको एक कारण है आक में खुद में भी रस हो
4: भी पानी से भरपूर हो
5: आपने जकी सीव है भगवान बाकी तो कंट्याला पेड़ पौधा जका ही बे है चाहे वो कंकेड़ो हो
4: चाहे अरणो हो
5: मुराली अरणो तो खैर कंटाला को नहीं कंटाला की बात करा जाए आप कंकेड़ो हो मुराली हो इंगूनी हो खैरी हो एक ये मोटे कंटा का मजबूत पेड़ों में अरणा जका ही अरणा जगह घेर ली अरणा में कांटो को नहीं हो पेड़ के माकी धन पशु जगह निकले अरणे के माकी निकल जाए रोज है नील गाय है हिरण है अरणे के माकी निकल सके ठीक है ना। लेकिन कंकेड़ो है मुराली है इंगूनी है खैरी है एक कंडे कांटा का हुए आक माकी धन पशु जगह वो निकलने की गलती कौन करे हाँ। लेकिन आक इश्यू अब जठे जगह मिले बैठे ही पनप जाए आक वापा कोई पानी थोड़ी गाला कितो आक पन पेड़ो दिखे अपन जावा बड़ा आके आग दिखे ने तो अगर गुंदरी परवल आपा आग की जड़ में गिर दिया पानी गालने की जरूरत कोनी डोलियों थाने और जाके देख सो के 5 दिन 7 दिन 10 दिन बाद में तो अच्छी पन पेड़ी लाते तो अगर आपा खेत में जा रहा अपनी हरी बाड़ आपा बा रखी है जकी कमाई तोरू है या कोड़ो है या काचर है मतीरी लोयो जो भी है तो बैठे जे कठे थाना आदि है का आंकड़ा भी है एक दो सारे आसपास तो भी की जड़ में अपन जे परवल का बीज पांच सात दस बीज भी थे गेर देगा ना तो पूरे मौसम थाना सब्जी कराओगी इतनी परवल लागेंगी तो किसान भाई जे गौर करें थोड़ा सो और परवल ने जे प्रायोगिक तौर पर भी ली तो आपने परवल बहुत अच्छे तरीकों पर
4: बिल्कुल पंकज भाई अपनी बतलावन पर अपना किसान भाई है वह गौर करेगा आपकी जड़ का मायने परवल को बीज है वो जरूर लगावे यानी तो एक प्रयोग के रूप में ही है जिसको कर ले और वो प्रयोग सक्सेस हो जावे तो और ही बड़ी बात है बड़े स्तर को प्रापा को बिजाई है बात कर ले तो पंकज भाई आपा अपना इताड़वा ने बार बार में समय समय पर हर चीज है बापा याद दिलाता रहा और आज देखो बिजाई हूँ पहला या अपनी खरीफ की बिजाई को बखत आ रहे
5: तैयारी
4: है तो एने भी तैयार करके और आपके खेत ने सुरक्षित है राख सके
5: भाई देखो कहते पूर्व तैयारी की बात भी करी ने तो ए टाइम में जकी पाड़ ने भी पाड़ की स्थिति तो आए का करीब करीब लोग एक पाड़ तो लगा दी ठीक है ना और कई किसान भाई इसे ही जका थोड़ा सवाचेत ज्यादा ही खेत के प्रति समर्पित ज्यादा ही तो बे किए बांध दो दो भी करे दोनों सिरों टेढ़ी बांध भी लगा दी इको फायदो की है जेठ साड़ की जकी तावड़ी पड़े एक मायने एक तो के जमीन के मायने जका भी रोग है पाड़ करने को मतलब जमीन को मुंह खुल गयो सांस लेने को टाइम मिल गयो और जका नुकसान पहुंचाने वाला कीट है कीड़ा है जमीन के मायने निकल सी तो आज की तातेड़ है क्यों तो थे बतायो कि अपना जगह मित्र पक्षी बेबान चुग ली और मित्र पक्षी जका ने नहीं चुग सक्या या जका बारे सही तरीकों बाकी निजर नहीं पड़ी तो बिन आज की तातेड़ तपत है आवाने
4: मार देसी
5: मार देसी एक सागे सागे अब देखो दो तीन दिन आप गौर कर ला रहे हैं शाम के आंधी उल्टे को सो माहौल बन रहे है तो वो जो आंधी उल्टे को जो माहौल है ना यो भाई वो किसान के लिए बहुत फायदेमंद है आंधी आज आज घर तो आप सोचा कि घर के मायने बड़ी माटी माटी होगी दिन के आपने बीरबानी जकी बस सोचेंगे दिन के पूरा घर बारनो पड़ेगा बारो देना पड़ेगा और माटी माटी होगी सगले पर किसान जो ने वो हमेशा ही उम्मीद करे प्रकृतियों का ऐ जगह जेठ साड़ का मना या मांदी चालनी भी जरूरी है
4: जरूरी हो
5: क्योंकि जकी ओपरी माटी उड़ के आवे जकी छणवा उड़ के आवे वह उपजाऊ बहुत होवे आपा काने
4: वा में पोषक तत्व की भरपूर मात्रा होवे
5: और जट्ठे जट्ठे छणवा डटेगी खेत में थे गौर करके देख लियो बट्टे रंग नाच को जको रंग है ना लुआनी है ना जकी नाच
4: न्यारी नजर आवेगी
5: न्यारी नजर आवेगी जट्ठे छाप लग गए आपने बट्ठे या तो के करा आपा थोड़ी दूर में दाबा दे दियो खाड़ा खोद दिया दाबा दे दिया तो भी के ओपरी माटी दाबा में पड़ेगी आके और जे दाबा नहीं दे रहा तो आपने जकी अड़सोटी है अगर बंचेड़ी पड़ी है तो अड़सोटी ना आप ले लिया थोड़ा जचा के मुठिया सा और बन बूर दिया तो वह की है गलेगी तो सागत तो वह खाद को काम करेगी जितनी पुरानी आपकी अड़सोटी है दो साल चार साल पुरानी जितनी भी बीती पुरानी में काम में लिया तो एक तो बा गलकी के खाद के रूप में तैयार हो जैसी दूसरी बात जट्ठे बिना अपने दाबेड़ी है रखेड़ी है बटे सारा आके ओपरी माटी डटेगी छणवा भी डट रही है और सागे उपजाऊ खाद को काम कर दिए तो बा और ज्यादा फायदेमंद है जो एक फायदा तो हो गयो कि खेत में जटे छाप लागे बटे ओपरी माटी डट रही है दूसरी बात गलेड़ी जकी अड़सोटी है बा खाद के रूप में भी काम में आ रही है आपने और बांध कर दिया जब एक जियो जा तो एज की पूर्व तैयारियां ही अंग बन खेत ने तो जे आप सुधारा ही भाई सीव सपड़ा सुधार लिया बोझो डाली कर लिया जंटी जंटी आई जका ने छंगोरा कर लिया आप और जका करने वाला ही काम कर लिया बी के सागे सागे घर की जे आप बात करा क्योंकि वो कार्यक्रम अपनो खेती गृहस्थी दोनों है तो घर की आप बात करा तो खेत तो जुड़ेगी जको अपनो खेत बावांगा आपा पूरी तैयारी भी जुड़ेगी बिग माइंड जे आपन बीज तैयार करनो है अपनो बीजोटियो तैयार करनो है जे आपा अपने भय तू बारिया तो अपनो हल है कुसु है पुरानी है जेवड़ी है रस्सी जकी है किसे की पूरी तैयारी रखा अपनो जको भय है बिको जको स्वास्थ्य है बिकी एकदम जांच करावा जका स्वास्थ्य कर्मी है या तो घर घर अब टीकाकरण को भी दो चार
4: पशु बिल्कुल
5: जरूरी टीका लगावा अपनो पशु है आप पशु अस्पताल में ले जावा डॉक्टर दिखावा जांच करवावा और आपने कानी पूरी तैयारी रखा।
4: बिल्कुल, देखो पंकज भाई, थे पशुओं में टीकाकरण की बात करिए तो देखो खेती और पशुधन दोनों सागे चाल है, तो इब आपा कन थोड़ो सो ठालप है। ठालप में आपा अपने पशुओं को टीकाकरण करवा लिया, बहुत सा संक्रामक रोग से अपने पशुओं ने आपा बचा लिया।
5: सिर्फ बात को नहीं, आपा जितना भी छोटा मोटा पशु है सब ले जाओ,
4: सारा पशुओं को टीकाकरण करवा लिया तो अगले रोग से है जी को अपना पशु बच जावे। और देखो पशुओं में रोग है बात आई रहे, संक्रामक रोग एक से दूसरे में, दूसरे से छठे में, या पूछता और अपने पशुओं ने सारा ने जगह पे रोगग्रस्त बना ले। इसे बचने के लिए अपन अपने पशुओं को टीकाकरण करवा ले, टीकाकरण के बाद में फिर आप अपने खेत की तरफ चला तो आप अपने खेत के मायने थे कार्यक्रम में बात करिए कि आप दो जिकी बान है बा करवा ली, कोई अपना अपना औजार है खेती बाड़ी में काम आना रहा, बाकी आप साफ सफाई कर ली, बाकी कोई पानो करवा लियो, कोई टूटेड़ है तो कोई तैयारी करा तो अपन जी बिरखा हुआ होता है आप बिजाई है बा शुरू कर दिया। पंकज भाई बातचीत तो आप और भी कर यार, मौसम भी देखो आजकल
5: दो दिन तो देखो अजीब से
4: आ जाए तो मौसम के सागे सागे देखो अपना इतालवा ने आप जब गीत संगीत की बात करा तो मौसम से जुड़े गीत है वो भी सुनावा, सुनो आप भी और मैं भी।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: किसान भाइयों, आ संदेश पाछ आपरो कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत है। किसान भाइयों, आ संदेश हूँ पहला आप सीमा मिश्रा हो गायडो मीठो सो लोक गीत सुनियो। उम्मीद करा आपने जिको गीत है जिको पसंद है। और पंकज भाई, अब आपने बतलाव आगे बढ़ावा और बढ़ा अब आपने खेती बाड़ी की तरफ।
2: देखो, खेती बाड़ी की बात आप करी, भाई खेत की तैयारी की आप बात कर ली। आज कार्यक्रम अपना खेती और गृहस्थी, तीन घटक है अपना, खेती पशुधन और अपनी गृहस्थी। अब बात जो आप पशुधन की करा, तो वो जो बखत है अयुब भाई, वो बखत भयंकर तातेड़ को है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़े, एक गर्मी के मायने जया आपनो जी घुटेर आपा दुख पावा ने, भाई आपनो जो को पशुधन है वो भी गर्मियों त्रस्त है। बोल के कौन कह सके, खास तौर जो की दिनोड़ी है बांक के ऊपर गर्मी को असर और ज्यादा हुए। जोर की जद गर्मी पड़े, जद आपने कहबत भी है ना कि आंकड़ा को दूध ही सूख जाए, तो दिनोड़ी जकी है बांक को दूध जको है बिकी मात्रा बनाएडी राखनी बराबर, बा आपना जका पशु पालक भाई बहन बांक के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती हुए। और पशु जको है, जको दुधारू पशु है, बिको दूध बिकी गुणवत्ता बिकी मात्रा में गिरण देने की बजाय आपा बिकी मात्रा बढ़ा सका, इसका उपाय घरेलू इसका तौर तरीका अगर आप थोड़ा बड़ा अपना लिया, तो भी आपने पशुधन की जकी गर्मी है बस तो सोरी निकले ही निकले, बिके सागे सागे जकी दूध की निर्भरता है, या अपन जहां घर के हिसाब रखा या व्यवसायिक तौर पर पशु ने रख रहा, दोनों चीजें आपकी जगह महत्वपूर्ण है। घर के मायने जे किलो आधी किलो टेम को खड़को दूध ऊपर नीचे हो जाए तो मैनेज कर लिया आप संभाल लिया, लेकिन अगर आप व्यवसायिक रूप में दूध का उत्पादन कर रहा या पशुआ ने पाल रहा, तो बट्ठे किलो दो किलो दूध भी जो है ना वो साख को घाटो तो है ही है, सागे सागे वित्तीय घाटो भी।
1: बिल्कुल, देखो पंकज भाई, इनलिए अपना पशुपालक भाई ना पा कई तरह की सावधानी है। मैं बतावा कि एक तो अपने पशु को जिको ठाण है वो आवादार होना चाहिए। आवादार हो सी तो पशु है भी बड़ा आराम से आपको जिको चोखो चरपी की और जो जुगाड़ी कर सी तो अपनो पशु है वो एकदम अपन एकदम गुणवत्तापूर्ण है जिको दूध है वो देवगो। बी के लिए भी ने बेके चारे की आप बात करा तो एरियो चारो मिले तो पंकज भाई बहुत अच्छी बात है। अगर एरियो चारो आपा करने उपलब्ध नहीं है तो बैग मायने सूखे चारे के मायने तीन चार तरह को आपा मिश्रण है,
2: मान लो कैल्शियम है, मिनरल है, मिलाना जरूरी है,
1: अभी है बे दे दे वहां
2: तो सके शीर्षु को तेल जो को है ना वो भी देश का और पाव आदपा गेहूं को आटो है ना वो भी जे मिला के खुआवाने तो इन दूध में बढ़िया बढ़ता हो।
1: देखो बेड़ो जो है वो देखो पंकज भाई अपने पशु के लिए गर्मिया के मौसम के मायने बहुत अच्छो आहार है वो बन सके, तो आप अपने बांटे के मायने अपने पशु के लिए जो को दलियो है वो जरूर शामिल करा। और अपने पशु ने दिन में आप छाया को विशेष रूप से ध्यान रखा और बेने आप पानी है।

0: कारोबार में है वो दिखाता
1: रहा। पानी पानी जा दो बार तीन बार तो आप ही पैवा एक आधी बार और दिन में पानी पूछ ले आठ को। जब आप खाने की या आहार की बात करें हमें एक महीने एक तो जो को मेथी दानो है वो जोर को काम कराया यू भाई ठीक है ने एक सागे सागे सतावरी और आंवले को चूरण ए जकी तीनों चीजें ए दिनोड़ी के लिए रामबाण काम करे। दूध की मात्रा गिरन कौन दी गुणवत्ता में कमी कौन आन दी और जकी दूध की बढ़वा रहे बिकमाइन कटे न कटे फायदो करे।
0: बिल्कुल
1: थे पानी की बात कही पानी के मायने भी ऐसे में पशु ने तातो उकल तो पानी नहीं पियानो बारे अपन दरिया रखा कुंडी के मारा खा और रखा वो दिन में एकदम तातो तेल वर को जाए
0: वो तो बिल्कुल ही कौन पिलानो है पंकज भाई।
1: हाँ तो पशु जो को है ने पशु ने पानी अगर आप कुओ कर रखियो तो निकल तो पानी नहीं जको छाया कमा दरेड़ो रहे अपनो पानी गर्मी को मौसम है। दूसरी बात अगर कोई पशु ने बारह माह बांध रहे आप तो दिन के आज जरूर गौर कर लिया कि नौ बज गया सवा नौ बज गया धूप तेज हो लगी पशु ने आप बांध दिया पेड़ के नीचे जको पशु बन रहे भी भाई आज जरूर ध्यान रखा कि ई पशु ने आप खूंटा जकाई में फिराता रहा छाया जकी भी छाया कमा रखा। खाने की जहां बात करी थे हरे चारे की बात करी एक माइन ज्वार हो जा बाजरा हो जा मक्को हो जा जो भी उपलब्ध हो जा चरी हो जा बा हो जा मिक्स एंड मिनरल है देश का सूफ सागे देश का थोड़ा बड़ो देसी घी भी खाने का मान दियो जा सके। फिर अगर जय मान लो भैंस है बिना नुआने को गर्मी का मायने बहुत जरूरी है
0: नुआने की जो बात आ रही है तो पंकज भाई अपा ने देखो सूरज निकलने के साथ ही अपने पशु धन लानो है
1: गाय की भी बात करा
0: गाय चाहे
1: गाय ने भी अपन वास का
0: हां गाय ने भी आपा सूरज चढ़ने के साथ अपने पशु ने अपन कदी है वो नहीं नुआनो क्योंकि तापमान की जो आपा बात करा तो पशु को तापमान और आपने देखो सूरज को तापमान दोनों है देखो भाई अपने पशु के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है तो नुआने के लिए दिन के को बखत है वो सबसे अच्छो है और सुमित माने गए
1: एक सागे सागे जब अपन दूध काट रहे दूध काटने पहली और दूध काटने के बाद
0: में
1: पशु की जकी उष्टी है जगह थन है मैंने अच्छे तरीके धुआं साफ करा आमतौर पर आप के देखा कि जकी दिराणी ने बदूद दूध उपली उष्टी ने बहुत चौखी तरीके साफ कर सी जार के दूध काट ले सी जो दूध काट गया उसी नाणो खींचो
0: और
1: बाल्टी लेके चल पड़े। देखो जितने सावधानी और जितने जतन अपन दूध काटने पहले उष्टी दवा थन दवा ना पशु का बीते जतन बीती सावधानी अपन ने दूध काटने के बाद भी पशु का थन जकाई पशु की उष्टी जकी बाद धोने की जरूरत है क्योंकि जकी दिनोड़ी है दूध देने वाले पशु जको ने बक में सबसे ज्यादा थनेलो रोग होने की संभावना
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: एक छोटो सो उपाय है घरेलू अपने पशु ने थनेले रोग बचा
0: थनेले रोग से बचाने को सबसे सरल तरीको है दूध काटने के बाद में अपने पशु की उष्टि धो दिया क्योंकि दूध जित काटने के बाद में अपने पशु की जिकी धार की शोर है वह खुली रहे और बिग मायने बैक्टीरिया जाने की संभावना है पूरी पूरी रहे ये वास्ते दूध काटने से पहला दूध काटने के बाद अपने पशु की उष्टी है बापा जरूर धोवा जैसे थनेला रोग से अपना पशु है वो बच सके।
1: इसके अलावा समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह लेके पेट का जका कीड़ा ही बन मारने की दवाई जकी है बापा अपने पशु ने देता रहा क्योंकि मक्का जका परजीवी ने वो संक्रमण महीने महीने चूसे वो पशु के कमजोर हो और दूध कौन बनावे तो पशु ने पेट का कीड़ा मारने की जगह दवाई पशु चिकित्सक की सलाह लेके दे।
0: और देखो पंकज भाई आप तो थे आंतरिक परजीवियों की बात कर ली अब देखो गर्मी के मौसम के मायने बाहरी परजीवियों को भी अपने पशु पर बहुत ज्यादा प्रकोप हो बिग मायने चींचड़ी है जइयो है शोरियो है एक एक अपने पशु की चमड़ी के मायने सीधा घुसे अपने पशु को खून है वो चूसना शुरू कर दे पशु अपनो धीरे धीरे धीरे धीरे कमजोर हो जाए दूध उत्पादन गिर जाए स्वास्थ्य भी को कमजोर हो जाए तो अपनो पशु है वो एक रोगग्रस्त हो जैसी तो आंतरिक परजीवी को ध्यान रखा भी है अपने बाहरी परजीवियों को प्रकोप है वो अपने पशु बापा नहीं होने देवा दोनों परजीवियों से आप अपने पशु ने बचा लियो तो निश्चित रूप से अपने पशु को दूध उत्पादन है वो यथास्थिति रहोगो या कुछ न कुछ बढ़ के अपने मिले वो।
1: इसके अलावा पशु जको है बिके साफ सफाई को ध्यान भी अपन रखना नुआने की अपन बात कर दी दिन के मायने दो बार पशु ने अपा सामान्य तरीकों भी दिन के छिपे देखा पशु के एक खास बात और है यू भाई जो बाग है ना धनी का साग है वो बाग भी बहुत मायनो रखे। एक तो आवे का आप अपने पशु है बिन खाली दूने के टेम में पशु का सारे जावा बाकी पशु का सारे नहीं लगा। जब नीरा पशु के कन जावा तो देखो पशु ने बतराने की जरूरत है, पशु ने संभालने की जरूरत है। थे पशु के डील पर थोड़ो हाथ फेर छो भी के खाद कर छो भी के कन जाशो दोबर भी ने बतला छो बहुत बार आप देखा के कोई भी पशु अभी को अपन नाम रख लिया घर में और भी नाम को धनी हो जाए वो पशु थे वो नाम लो लेता है राम सिंह जे गाय ने तो राम की नाम लेता है
0: कान खड़ा करे
1: कान खड़ा कर ले सिंह ठुंगाल सिंह बबता सिंह कहते जो नाम ले रहा वो
0: मैं हूं।
1: तो वो क्या है वो है एक पशु
0: प्रेम
1: पशु के सगे जे आप आज की भाषा में कहना कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन जो संवाद है वो भी कठे न कठे ई दूध के उत्पादन में फायदेमंद है क्योंकि बिके सागे पशु जको है ना वो मनु जुड़ाव महसूस करे धनी के सागे जको मेल है ना पशु को वो ई दूध उत्पादन में आंशिक रूप निश्चित रूप सहायक है। तो आप कोशिश आ भी करा का आपने पशु के सागे अपनी जगह बॉन्डिंग है ना बात एकदम सही रहे। पशु को नियमित रूप खाने को नियमित रूप पानी को नियमित रूप भी ठाण को बारे भीतर बारने को ऐ सब ध्यान गर्मी का मा आप अगर राख सा फिर जहां कच्चो अगर है ठाण तो पशु का हर बार आप गर्मी जहां दोपहर बाद में थोड़ा पानी को छिड़काव कर सका ब्यू भी की है पशु ने थोड़ी रात मिले
0: ठाण के बारली साइड ठाण के
1: नहीं नहीं ठाण के बारे की बातचीत जारी रख सा हितालुओं को मनोरंजन करावा सुना देंगे मीठी सी लोक रचना
0: सुनो सा।

0: किसान भाई अभी आपने सीमा मिश्रा और साथिया गायडो मीठो सो लोकगीत सुने और पंकज भाई ये लोकगीत के बाद में अपने कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और फिर आप अपने देखो खेती बाड़ी पशुधन गृहस्थी देखो तीनों घटक है आज देखो आज अपने कार्यक्रम खेती और गृहस्थी में चल रहा है तो आप फिर एक बार अपने देखो बायो हाथ पशुधन और पशुधन में भेड़ बकरी वो भी देखो किसान को बहुत बड़ो हितैषी
1: है सा
0: कह करे ने के बोलियो गरीब की गाय बकरी बात देखो एक छोटी सी जगह के मायने भी आपा है बिना राख केर चा पानी को खर्चोर दही को छाछ को देखो जिको खान पीन है बीकी भी पूर्ति है बा करे पर आका जिका छोटा बच्चा है
1: मेमना
0: मेमना बेड़कार मेमनो और बकरी को बच्चियों है
1: तो बकरी को मेमनो कहता है भेड़ को उरनियो बोलते हैं
0: हाँ तो आंखी भी गर्मी के मौसम में ख्याल रखनी है बा बहुत जरूरी है
1: को मतलब वो है कि आंखी थोड़ी ज्यादा सावधान
0: हाँ क्योंकि भी छोटा छोटा हो
1: नाजुक
0: गर्मी से लड़ने की आपके शरीर में इतनी ताकत को नहीं हो तो क्यों न क्यों अपने से उम्मीद करे की भी ए मारो धनी है मारो भी चोखी तरिया गर्मी के मौसम में ख्याल रखे तो मैं भी है जी का बड़ा हो कि मौसम के सागे लड़ने की जी की शक्ति है मैं हमारे शरीर के मायने में है जी की बना ले इसलिए बनाने भरपेट दूध है वो पिलाणु है जब भरपेट दूध पीसी तो देखो दूध का मायने सारा का सारा पोषक तत्व हो जितना शरीर न चाहिए बस सारा का सारा दूध का मायने हुआ पंकज भाई तो जी हाँ जी हाँ वो दूध पीसी बिया बिया भी मायने है जी को रोगा से लड़ने की ताकत है मौसम से लड़ने की ताकत है वो आपके शरीर के मायने वो बना ले सी
1: एक सागे सागे देखो जकी रेठाने छोटा जका मेमना ही या उरणिया ही बाकी जकी रेठाने भी को बहुत अंतर पड़े पुराने टाइम में तो क्यों हो तो जे आंगण में पिंजरों का लेटा रखता लोग पिंजरों तो गोलियो भी पिंजरे के तरह उर्णिया ने मेमनो तो बन भी के तरह दाव देता बकरी आती काट देता देखो समय के सागे

0: चीज में बदलाव की जरूरत है। भाई समय आंगना जगह होता है ना, भाई लेव वाला आंगना
1: कच्चा होता है, लेव होता है,
0: लेव को आंगना होता है, प्रकृति के जुड़ेड़ा जको अपने मेमनो तो भी अनुकूल हो तो आज घरांगा में आप देखा कटे टाइल लाग रही है, कटे चौका लाग रही है, पक्को को नहीं
1: कटे सीमेंट को आंगनो है।
0: हाँ तो जटे भी आपा अपना जखा ए छोटा मेमना ही या जखा उरनिया ही आ न रखा तो एक तो रेठान जिके बा का अनुकूल बनावा, चाहे कच्ची माटी की बना के दया, माटी छिड़क के बनावा, बटे पानी पात गिर के जया भी करके, या पाल गूंथ के बनावा, चाहे टाटी बना के बनावा, कहीं भी बनावा, बिन मौसम का अनुकूल रखने की जरूरत है। गर्मी जोर की पड़े पानी पातू बे के बिन थोड़ी शीतलता देने की जरूरत है, अपने भी तो जरूरत है, विषी पशु तो जरूरत है, हालांकि प्रकृति अन्न अपने भी ज्यादा दे, जैसे शरीर पर बाढ़ है सर्दियों भी बचाने को काम करेगी
1: और गर्मी से बचाने को काम करेगी, बिल्कुल
0: अन्य भी बेई भाई बात है। अपन वास का ये छोटा जका जानवर है, उड़निया ही मेमना ही चाव ना, और कई बार थे गौर करके देखियो सीने तो अम भी विषय बचपन हो जिसो अपने टाबरा में घर के टाबरा में सागे इतना गुलेड़ा मिला डा रहे कभी खेलता
1: रहे,
0: तो इस चीज को भी अपन गौर करने की जरूरत है कि अगर घर में टाबर अपनो छोटे बहुत दिन के छिपे खेले तो भैया आपनो चाहे उड़नी हो चाहे अपनो मेमनो है बिन भी अपन घर में डुआला बिन खेलने को अवसर दे, चाहे टाबर के सागे खेले वो चाहे मत्ते की लोड़
1: चाहे वो आपके धनी के सागे खेले
0: थे बिन छोड़ भी देशों ने जहां दिन के छिपे छोड़ दिया तो बाकी जकी माँ है ने भी गार बार खुंटे गार बार घूम बो कर सी, कूद बो कर सी, किलोड़ कर बो कर सी, गुड़गेटी खा बो कर सी, खड़ा हो जैसी आपस में लड़ बो कर सी, खेल बो कर सी, कदे बाके ऊंचा चढ़ सी, कदे नीचा चढ़ सी, एवं भी क्षमता डेवलप हुआ है। दूसरी बात बन ने जो टेम पा गया तो सिर्फ दूध पर रखने की जरूरत को नहीं, बन चरारा करने की भी जरूरत है, थोड़ा बड़ो चाट है कोई बांटो है दूसरे पशुआन दिया वो बन धीरे धीरे धीरे धीरे
1: खुआनो सिखाओ
0: धीरे धीरे धीरे धीरे जटे भी आप शिला रखियो ठंडो कर रखियो लिया के भी को ऊपर झोंका बन बन चरारा करा तो ब्यूं के अतिरिक्त पोषण मिले। और किशो भी मौसम होए भलाई सर्दी को होए भलाई गर्मी को होए मानस आप खुद हो चाहे अपनो पशुधन हो अगर शरीर में पोषण मिल रहे तो बस हाथ की जिकी मार है बिन डील ग्यामे को नहीं खेजा फिर तो इसलिए कोई भी पशु छोटो बड़ो किशो ही हो आप भी को आहार पूर्ण रूप में पौष्टिक वो किसे माहौल में रह रही है जो रहने रहवास है बिन मौसम के अनुकूल बनानो और बिन जकी भी की प्राकृतिक जरूरत है वह पूरी करनी बिन वो माहौल देनो अपनी जिम्मेदारी
1: बिल्कुल। और देखो सारा का सारा काम गृहस्थी के मायने सारा संभव हो सके क्योंकि गृहस्थी के मायने आप बहुत सारा मानस एक सागर रहवा तो कदे कोई सो भी को ख्यात रख ले कदे कोई सो भी को ख्यात रख ले वो भी बांके लिए बहुत हित के मायने
0: छोटा ही एकदम जाए दो दिन का पांच दिन का दस दिन का तो भाई रात ने अपन उठ के बीच में दो चार बार ठंडे लो रात ने भी कराना पड़े भाई बाकी क्षमता है जगह छोटी सी है चीड़ी चुग वाली सी बात है दो चार घूंट पियो पेट भर जागो लेकिन दो रुपये साफ कर दियो एकदम खाली हो गयो तो अपन जगह भी हाँ अपन आ ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर छोटा ही तो रात ने एक बरक दो बरक बने भाई एक तो जहां सोते टाइम दस ग्यारह बजे ठंडे लो करा दियो रात ने दो एक बजे से करा दिया दिन के फिर उठा से करवा दे क्योंकि रात ने सिकुड़े को नहीं पेट सुस्से को नहीं भूख मरते को नहीं मरे और जो पोषण है वो बने रहे क्योंकि शुरू में थे के बात कही कब दूध जो है भी मैं सोखियां की पूर्ति हो तो दूध भरपूर मात्रा मिलना चाहिए लेकिन वह मात्रा तो सीमित है भी तो पी लिए बादम भी के तो काम की बात को नहीं अब वो पच गयो भी के बाद में भूख करेगा दोबारा जब तो, दिन को टाइम हो जब तो मान लो घर में कोई से चले जा खुद ही चले जा लेकिन रात में आप बिन बिगे रहे ठाण के वहां बंद कर रहा है पिंजरे में बांट दियो या बिन बिगे घर में बांट दियो बनाए डे में तो भट्ठो रात ने अपन भी ने
1: देखो पंकज भाई कई जगह अपन देखने भी मिले है कि छोटा दो चार पांच दस दिन का
0: जगह
1: पशुपालक की बात पे जरूर गौर करे कि दस ग्यारह बारह बजे तक दूध एक बार जरूर पिलावे क्योंकि बनाने भी बात को ध्यान है कभी आप अपने पशुआ ने है जिका सुरक्षित रखने के लिए छोटा बच्चा ने बखत सारूबी को पेट आप दूध के रूप में भर देवा तो भी की रात है वो आराम से निकल जावे और आपा ने भी रात में है वो बोल वो जो अपनी भी नींद है वह कौन खुलेगी तो ये लिए भाई रात ने 10-11 बजे भी ने दूध जरूर पिला की आपको पिंजरे में रखे या कोई इनकी बाकी व्यवस्था कर रखी है बड़े भे भी ने बाढ़ की आप भी निश्चित हो जाए उड़निया भी है जी का निश्चित होगी
0: एक सागे सागे एक खास बात जी ने वह आ हो रहे कि चाहे अपनी बकरी होवे चाहे अपनी भेड़ होवे, ठीक है ना, बिके स्वास्थ्य को अपन ध्यान रखना जरूरी है। कारण के मेमना ही या उरनिया ही बस दूध पीवर जब तक दूध पर आश्रित है, जब तक बाकी पेट की पूर्ति दूध हो वे। अब अगर बाकी माँ कोई भी रोग ग्रसित है या कोई भी संक्रमण है तो वो दूध के जरिए बक माँ जाने की पूरी संभावना रहे। स्वस्थ अगर माता है तो बिक जो दूध है वो गुणवत्ता परिपूर्ण है, भरपूर है। लेकिन चाहे बकरी हो चाहे भेड़ हो, अगर कोई रोग की चपेट मारी है तो भट्ठे अपन वो जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अट्ठे अगर संक्रमण फैलने की संभावना है तो भट्ठे जका भी मेमना ही जका भी उड़निया ही बांके दूध की अपन व्यवस्था ना के करा, बांके आहार की व्यवस्था ना के करा, बिन भी धन पशु अलग करा। जब तक वो पशु स्वस्थ नहीं हो जाए, जब तक जकी बकरी है भेड़ है स्वस्थ नहीं हो जा, जब तक आप मेमना की व्यवस्था भी हिसाब रखा का संक्रमण दूर रहे। संक्रमित खानो जै मानस ने छोटो टाबर आप कौन देखा कि सर्दी के महीने अगर टाबर की मां ने जुकाम लाग रही है तो टाबर दूध पियो भी जुकाम लाग
1: जाए
0: तो बहुत जकी स्थिति है, हमें भी तो जाए। तो इसलिए आपने जकी भी बकरी है या आपने जकी भी भेड़ है बिको स्वास्थ्य भी अपने लिए बीतो महत्वपूर्ण है। गर्मी के महीने पौष्टिक भरपूर खानो दिया, पानीपात की व्यवस्था रखा, जकी रहठाण है बिना एकदम सही साफ सुथरी रखा, हवादार रखा, जरूरत पड़े तो बेटे पानी को छिड़काव करके बना पाओ बा व्यवस्था दें जिसकी मौसम का अनुकूल हो।
1: उम्मीद करा पंकज भाई अपना इतालू है आपके मेमना को आपके पशुधन को मौसम के अनुसार ध्यान रखे और बनाने स्वस्थ रखे, स्वस्थ रहसी तो दूध उत्पादन बनाने मिलसी तो बाको आर्थिक स्तर है वो बढ़सी। बातचीत तो और भी करना चाह रहा था, आप देखो मनड़ो करे है कभी चलता चलता एक गीत आपा भी सुना और अपने इतालवा ने भी सुना तो सुनो सीमा मिश्रा गायडो मीठो सो लोकगीत।

0: जी सीमा मिश्रा की गायडी ई मीठी सी लोक रचना के सा गई
1: आज को कार्यक्रम
0: अठाई ताई फेरो मिलन ताई पंकज भाई ने
1: अयु भाई ने सीख दियो करा आपू
0: राम राम।

अभी ये किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

थोड़ी सी बेवफाई। श्रोताओं, आप इस फिल्म में सुन रहे हैं खयाम का संगीत और नक्श लयालपुरी के शब्दों को किशोर कुमार की आवाज में।

श्रोता सुन रहे हैं खयाम का संगीत और एक बार फिर से नक्श लयालपुरी के शब्दों को, आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: FM चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आइए श्रोता हम सुनते हैं शैलेंद्र सिंह को।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी चूरू से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में 5 अप्रैल से होने जा रहा है परिवर्तन। आप सुनेंगे प्रत्येक सोमवार की सुबह 9:15 पर फिल्मी कवालियों का कार्यक्रम महफिल। 9:15 पर ही प्रत्येक गुरुवार को आपके लिए लेकर आएंगे लोक संगीत का कार्यक्रम मरुवाणी। श्रोताओं, 9:30 पर सोमवार की सुबह आप सुनेंगे किसी एक कलाकार के जीवन पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रलोक। 9:30 पर ही बुधवार की सुबह आप सुनेंगे किसी एक फिल्म की जानकारी पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्र संसार। दिन में 11:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। दूसरे और तीसरे रविवार को हम आपके लिए लेकर आएंगे फोन इन प्रोग्राम हेलो चूरू। और साथ ही आपको बता दें, श्रोताओं के विशेष अनुरोध को देखते हुए इस कार्यक्रम का हम पुनः प्रसारण करेंगे मंगलवार की रात 10 से 11 तक। श्रोताओं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मेल बॉक्स अब शनिवार के बजाय सोमवार को दिन में 2:30 से। इसी प्रकार दूसरे और चौथे बुधवार को आप सुनेंगे दिन में 2:30 आपका अपना फेसबुक कमेंट्स पर आधारित कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश। श्रोताओं, एक और परिवर्तन, आपका अपना पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम वन भावन अब आप सुनेंगे प्रत्येक मंगलवार को रात 9:15 से 10 तक। सुनते रहें आकाशवाणी चूरू के कार्यक्रम। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: FM चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म चिराग में। श्रोताओं, इस गीत के लिए संगीत है मदन मोहन का और शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज 8:09। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए

0: खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: The visit to the 4 European countries.
2: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप्स और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
3: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
1: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
4: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। US एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
5: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
6: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
1: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना,

0: श्रोता अभी सुन रहे थे सीमा मिश्रा की आवाज में राजस्थानी लोक संगीत FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी की चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को है। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले कार्यक्रम चर्चा का विषय है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: चर्चा का विषय है
2: दुनिया की नब्ज। पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मूज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व CMD ONGC के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
4: थैंक्स आनंद।
2: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
4: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। LPG का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी LPG इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
2: पश्चिमी एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
5: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास EV है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा।
2: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी SPR की भी चर्चा होती है, और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
3: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है, और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रति वर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें

0: जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पे पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है
1: जी।
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी।
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहां सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35,000 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है। और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और

0: ये सब तरह के साधन और यदि डोमेस्टिक हैं तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का उसको भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रहने वाला है, वो सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है

0: उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत उन गिने चुने देशों में है खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद यह है दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहाँ तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती हैं, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाय चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा।
1: जी बिल्कुल,
3: तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है, तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
4: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
0: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं यहाँ ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं। बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
5: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
6: चर्चा का विषय है।
7: FM 102.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। लीजिए पेश खिदमत है शास्त्रीय संगीत।

श्रोता सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के तहत आज आपने सुना उस्ताद बिस्मिल्ला खान का शहनाई वादन। FM 102.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

श्रोता, अभी सुन रहे थे सुगम संगीत FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। श्रोता, आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। IPL क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA has approved increase in minimum support prices MSP for 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnav said the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said for grade A paddy the MSP will be 2461 rupees per quintal, for Jowar hybrid it will be 4023 rupees per quintal, for Bajra the MSP will be 2900 rupees, and for Tur it will be 8450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi high speed double line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity to the lives of the farmers of the country. The Central Bureau of Investigation CBI has arrested five accused persons in connection with the alleged irregularities and paper leak related to the NEET UG 2026 examination. The five accused persons in the case, three from Jaipur, one from Gurgaon and one from Nashik, and several other suspects are currently being examined. The agency has also carried out searches today at multiple locations across the country based on emerging leads. During the searches and arrests, several incriminating materials and electronic devices, including mobile phones, have been seized. The agency is also coordinating with the Special Operations Group Rajasthan, which had conducted a preliminary